आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार शक संवत 1948 ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि तदनुसार 31 मई 2026 है। इस समय पृथ्वी के 5:56.49 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि से प्रारंभ

0: 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को ही अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्स।

0: और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आज का विचार, आइए इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं, गुणों का ही संग्रह करें, इस विषय पर विचार आलेख और वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
3: महामना परम योगी कबीरदास जी का एक दोहा, अगर हम सुबह सवेरे सुनते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। कबीर साहब फरमाते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी साधु ऐसा स्वभाव से हो जैसा सूप यानी छाछ का होता है। छाछ दानेदार वजनी धान तो अपने भीतर रख लेता है और हल्के छिलके बाहर उड़ा देता है। ठीक यही बात हर एक सज्जन के लिए है। संग्रह करना मानव मन की पुरानी कल्पना है। हम लोग तरह तरह की भौतिक चीज़ों का संग्रह करते हैं, लेकिन हमें सद्विचारों और सद्गुणों का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि संसार सद्गुणों के आपसी बर्ताव से चलायमान है। और गीता जी के अनुसार तीनों गुण यथा तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनमें निरंतर ही व्यवहार हो रहा है। जिसके गुण जिसमें प्रधान होते हैं वही करता वैसा बन जाता है, उसका संसार भी वैसा बनता चला जाता है। लेकिन अगर हमें संसार को सुंदर बनाना है तो सूप की तरह हल्के और मूल्यहीन हो चुके पथभ्रष्ट गुणों को उछाल कर बाहर फेंक देना होगा और अच्छे गुणों का संग्रह करना होगा। कहा भी गया है, अंतमति सुगति, यानी अंतिम समय में जो हमारी मति यानी बुद्धि विवेक सोच विचार कर रहे होंगे, आगे ठीक वैसी ही गति हमें मिलती है। अतः आवश्यक हो जाता है कि हम लोग सावधान रहकर सद्गुणों का बर्ताव करें तो संसार सुंदर होता चला जाएगा, मनुष्य का अभ्युत्थान होगा, उन्नति होगी, समृद्धि आएगी, सात्विकता आएगी। और यही तो मानव मन की लिप्सा होती है कि वो संसार में समृद्धि और संपन्नता के साथ सुख से जीवन यापन कर सके। देखा जाए तो हमारा मन ही बाहर से गुण अवगुण इकट्ठा करके लाता है और हमारे चित्त पर डालकर कर्मों के निर्माण में लग जाता है। अब जैसे ही गुण आएंगे वैसा ही निर्माण होगा। अतः अपने मन को साधने

0: चेष्टा करें। ऐसा नहीं कि जिधर मन कहे बहना शुरू कर दिया, ये तो भटकाव का रास्ता है और यहाँ जो एक बार भटक जाता है वो फिर बहुत मुश्किल से मुख्य धारा में लौट कर आ पाता है। अतः अपने मन को ट्रेन करें कि वो बाहर से अच्छाइयाँ लेकर आए, बुराइयाँ लेकर नहीं। अपने मन को संकेत देते रहें। मन बहुत समझदार होता है, शीघ्र ही वह बात को पकड़ लेता है, समझ जाता है। तो अपने मन का परिमार्जन करते रहें, इसे भद्दे विचारों का कबाड़ खाना मत बनने दीजिए। अपने मन को जितना आप सद्गुणों से सिंचित करेंगे उतना ही ये मन उन्नति के शिखर की तरफ लेता चला जाएगा। इसके लिए आप सत्संग करें, स्वाध्याय करें, अच्छा सुनें, दूसरों की बुराई करने से बचें, अच्छा देखें, बुरा देखने से बचें। ठीक वैसे ही बुरा सुनने से भी आपको बचना पड़ेगा। अपने मन के संग्रह करने की आदत का अनुसंधान करते रहें, फिर बैठकर निष्कर्ष निकालें, क्या संग्रह किया, कहीं अनावश्यक संग्रह तो नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो धान के छिलकों को जैसे सूप उड़ा देते हैं, वैसे ही अनावश्यक संग्रह को उड़ा दें और जो सार बात हो उसे ग्रहण कर लें। ऐसा आप व्यवहार में उतार कर देखें, आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आपका मन सामर्थ्य और परोपकार से भर उठेगा और जिंदगी के गीत गुनगुनाने लगेगा।
1: गुणों का ही संग्रह करें, आज आपने इस विषय पर विचार सुने। वाचक स्वर और आलेख श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। आज का विचार कार्यक्रम के बाद आइए आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भजन।

जगजीत सिंह के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम नमना संपन्न हुआ। मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए तुलसीकृत रामचरित मानस गान का सास्वर पाठ, संगीत सतीश भाटिया ने दिया है।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धा नथ हो पति के वचन सुनने लगी।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीकृत रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ, संगीत सतीश भाटिया ने दिया था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। लीजिए आप सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज आप श्री बजरंग सारस्वत से उनके लघु वार्ता सुनेंगे, कुष्मांड कुल की सब्जियों की खेती। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे लोक भजन और प्रातः 7 बजे होगा कार्यक्रम सुप्रभात।

रात्रि 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सौरभ कार्यक्रम में डॉक्टर संजू श्रीमाली से आप सुनेंगे उनकी वार्ता समकालीन हिंदी कविता में नारी का गरिमा बोध। समय रहेगा प्रातः 8:30। 8:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। आज रविवार है, नन्हे बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम कल प्रातः 9:30 पर और प्रातः 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। पर आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रमों का विवरण और मध्याह्न 12:10 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। 12:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

1:05 पर वहीं सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्याकालीन समय में संध्या 5:05 पर युवा साथी

अपना कार्यक्रम युववाणी। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप एक ही कलाकार के गाए फिल्मी गाने।

संध्या 7 बजे ग्रामीण में सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे संध्या 7:45 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। फिल्म संगीत आप रात्रि 9:15 पर भी सुन पाएंगे। अनुगुंज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। और रविवासर या अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम सुनेंगे आप रात्रि 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

सुन बीकानेर के ढोलमारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रातः 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें।

कद्दू वर्गीय सब्जियां गर्मी और बिरखारे मौसम री महत्वपूर्ण फसल है। पोषण री नजर आप देखा तो ए घनी महत्व है क्योंकि इन मायने मोकड़ा और जरूरी विटामिन खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले है जका अपने स्वस्थ रखने में घनी सहायता करे है। अब बात करा कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं आरी भात भातरी किस्मा और संकर प्रजातियां री। तो खीरो है खीरे री प्रजातियां हैं संकर प्रजातियां किस्मा हैं पोइनसेट जापानीज लॉन्ग ग्रीन पूसा संयोग और पूसा उदय। लौकी री फसल लेनी चावा तो इरी किस्मा और संकर प्रजातियां हैं पूसा नवीन पूसा संदेश पूसा संतुष्टि पूसा समृद्धि PSPL और पूसा हाइब्रिड 3। करेले री खेती जका भाई करना चाहे वाने बताऊं के इरी किस्मा और संकर प्रजातियां हैं पूसा दो मौसमी पूसा विशेष पूसा हाइब्रिड 2। अब अपा तोरी री बात करा तो तोरी दो भांतरी हुए है। इमें पहली बात कराला चिकनी तोरी री बाद में कराला धारीदार तोरी री। तो चिकनी तोरी री किस्मा है पूसा सुप्रिया पूसा स्नेहा पूसा चिकनी। और धारीदार तोरी री खेती करना चाहो तो इरी प्रजातियां किस्मा है पूसा नसदार सतपुतिया पूसा नूतन और को 1। 56 कद्दूरी खेती करना चाहे वाने बताऊं नरी नरी किस्मा और संकर प्रजातियां ऑस्ट्रेलियन ग्रीन पैटी पैन अगली येलो पूसा अलंकार और प्रोलिफिक। कद्दूरी खेती वास्ते अच्छी रेवे ए किस्मा संकर प्रजातियां जकारा नाम है पूसा विश्वास पूसा विकास पूसा हाइब्रिड 1। पेठे वास्ते किस्मा अच्छी रेवे पूसा उज्ज्वल और खरबूजेरी किस्मा है पूसा मधुरस पूसा शरबती और हरा मधु। तरबूजे वास्ते किस्मा है सुगर बेबी अरका मणिक और टिंडे वास्ते किस्मा और संकर प्रजातियां हैं बारा नाम है पंजाब टिंडा अरका टिंडा। अब बात करा उर्वरक और खादरी तो घनकरी बेलारी जिकी साग सब्जियां हैं जकारी आप बार बात करी बार वास्ते खेतरी तैयारी रे समय 1520 टन हेक्टेयर गोबर री खाद और 80 किलोग्राम नत्रजन 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास री जरूरत पड़े है। बीज बुवाई सारू खेत में

45 सेंटीमीटर रे अड़ेगड़े चौड़ी और 340 सेंटीमीटर रे अड़ेगड़े गहरी नाड़ियां बना लेव। एक नाड़ी सू दूजी नाड़ी दी दूरी फसल दी बेल री बडवार है बिरे मुजब 1.5 मीटर तही रखो। बुआई सू पहली नाड़िया में पानी लगा दो। बिर पछे जब नाड़ी में नमी री मात्रा बीज बुआई सारू आपने ठीक लागे तो बुआई रे स्थान पर माटी भुरभुरी कर परार आधे सू लेर 1 मीटर री दूरी माथे आप बीज बोवो। इरी बुआई रो समय है जिको आ छोड़े वे बसंत गर्मी री फसल जकी है बिर वास्ते फरवरी मार्च रे मैंने बुआई करी जे है और बिरखा रे मौसम री बुआई करनी चावे वाने जून रे छेकड़ सूलेर जुलाई रे महीने ताई करनी चाहिए। सिंचाई वास्ते फसल री जरूरत मुजब समय समय माथे पानी रो प्रबंध करनो चाहिए और सिंचाई और निराई गुड़ाई है बा नाड़िया में ही करनी चाहिए। भाई लोग चावे तो पोली हाउस खेती है बीरे मायने सु अगेती खेती भी कर सके है। कद्दू वर्गीय सब्जियां है वे उत्तर भारत रे मैदानी क्षेत्र में गर्मी रे मौसम में अगेती फसल तैयार करने रे वास्ते पोली हाउस में जनवरी रे महीने में झोपड़ी रे आकार रा पोली हाउस बनार पौध तैयार कर लेवे। पौधा तैयार करन सारू 15x10 सेंटीमीटर आकार री पॉलीथीन री थैलियां है बा में 1:1:1 माटी बालू और गोबर री खाद भर परार जल निकास री व्यवस्था सारू बीरमाय ने छेद कर लेवे। बाद में आ थैलियां ने 1 सेंटीमीटर अड़ेगड़े री गहराई माथे बीज री बुआई कर परार माटी री पतली परत बिछा देवे या पछे यंत्र री सहायता सु पानी लगा देवे। लगभग 5 सप्ताह रे महीने पौधा खेत में लगाऊ सारू तैयार हो जावे। जद अगले महीने रे महीने पाड़ो जको है वो पड़ने रो डर खत्म हो जावे तो पॉलीथीन री थैली ने ब्लेड सु काट परार हटाया ने पछे पौधे री माटी दसा के खेत में बनी नाड़िया में मेंड माथे रोपाई कर पानी लगा देवे। इन बात लगभग 1-1.5 महीने रे महीने अगेती फसल तैयार हो जावे जिनसु किसान भाई अगेती फसल तैयार कर परार मोकड़ो लाभ कमा सके।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए मदना देवी का गाया ये लोक भजन।

सुप्रभात के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज के इस नमस्कार को गुलाबी कहें, ठंडा कहें, कुछ मजेदार कहें, क्या कहें, क्योंकि मौसम जो है बड़ा मिश्रित हो गया है। आसमान में बादल भी हैं, धूल का गुबार भी छाया हुआ है, गर्द छाई हुई है। अच्छी चीज ये है कि गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई और ना तपे के इस दौर में ये जो आंधी आई है तो घर में रहने वाली माताओं बहनों के लिए जरूर थोड़ी परेशानी हो गई है साफ सफाई की, लेकिन इसने तापमान को कम करके उससे भी बड़ी परेशानी से सबको बचाया है। अब देखिए इसका प्रभाव कितना रहता है, लेकिन अभी तो मौसम विभाग कह रहा है कि भाई एक दो दिन तक तो मौसम थोड़ा ठीक ही रहेगा। आसपास के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, ओले भी गिरे हैं। तो ये जो मौसम है, मनुष्य का मूल स्वभाव है कि वो मौसम के समानांतर चलना चाहता है। मौसम अच्छा है तो मूड अच्छा, मौसम खराब है तो मूड खराब, लेकिन ऐसे चलता नहीं है। मन के हारे हारे और मन के जीते जी, तो जिसे मन को साधना आ गया उसे सब साधना आ गया। और मन की बात चली तो ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसे पता नहीं हो कि वो क्या गलत कार्य कर रहा है, लेकिन वो करता है क्योंकि वो मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो मुझे ध्यान आया कि देखिए सबको पता है कि इसको खाने से कितना नुकसान होता है, कैंसर तक हो जाता है, लेकिन लोग फिर भी खाते हैं। तो उनको समझाएं तो उसका असर क्यों नहीं पड़ता, वो बच्चे तो है नहीं, बस नशा नशा नशा। लेकिन नशा नहीं है, ये मजबूरी है। आप खुद को प्रेरित करें, दूसरों की प्रेरणा लंबे समय तक काम नहीं करती।

जो भी कोई नशा करता है उसे ये बताइए कि देखो भैया, आप क्या अपने पत्नी को, बच्चों को 5 साल बाद किस रूप में देखना चाहते हो, परिवार को किस रूप में देखना चाहते हो, और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और नशा ही करना है तो फिर भक्ति का कीजिए, प्रेम का कीजिए, पढ़ने का कीजिए। एक जादू और जुनून जैसा कोई नशा हो जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे और आप सफलता के शिखर की तरफ आगे बढ़ना शुरू करें, तब तो नशा किया तो किया, वरना फिर क्या नशा है। और यदि आप समर्पित भाव से जीवन को सुधारने में लग जाएं, तो फिर वही जादू है, वही नशा है, जिसका सेवन निरंतर करना चाहिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
4: तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी आदतें कितने बड़े बड़े बुरे परिणाम लाती है अगर वो आदत नेगेटिव हो, नशे जैसी हो। परिवार के परिवार और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत आशावादी होकर सोचते हैं सुबह का समय है, दिन की शुरुआत अच्छी करें। कोई नशा करने वाला भाई अगर आज के इस प्रोग्राम से सीख लेता है तो समझिए कि आज का हमारा प्रयास सफल हुआ। छोटी छोटी आदतों से जिंदगी को संवारा भी जा सकता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो बूंद बूंद से खाली भी तो हो सकता है। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए कई तरीके हैं। जो लोग सोचते हैं कि ओवरनाइट सब कुछ बदल लेंगे, एक ही रात में सब सुधार कर लेंगे, तो व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि बरसों से जिन आदतों के साथ आपको रहने का अभ्यास होता है उनको तुरंत बदलना, उनके साथ सहजता से अनुकूलन करना, ये मन और शरीर के लिए इतना आसानी से संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप बदलाव को बहुत छोटे छोटे रूप में करें और उसमें निरंतरता रखें तो चमत्कार हो सकता है। ये वैसा ही मामला है कि यदि आप रोज सुबह 9 बजे उठते हैं और अचानक तय करते हैं कल से सुबह 4 बजे उठूंगा, तो या तो उठ नहीं पाएंगे या बहुत ज्यादा अगर आपने ठान ली तो एक या दो दिन उठ लेंगे, लेकिन बाद में आपका मन और शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आप ऐसा तय करते हैं कि ठीक है अभी मैं 9 बजे

सुबह उठता हूँ तो इस अगले हफ्ते भर या 10 दिन तक मैं 9:15 उठूंगा, तो वो संभव हो जाता है। और फिर ऐसे 10-10, 15-15 मिनट कम करते करते करते कोई दिन ऐसा भी आ जाएगा जब सुबह 4 बजे आप उठ सकते हैं। तो बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी ऐसा ही किया जा सकता है कि कुछ अच्छी आदतों को धीरे धीरे अपनाया जाए और जो बुरी आदतें हैं उनको धीरे धीरे कम किया जाए, तो चमत्कार हो सकता है। बुरी आदतों को बहुत झटके से केवल वही लोग छोड़ सकते हैं जिनका आत्मबल बहुत मजबूत है, लेकिन जिनका आत्मबल मजबूत नहीं है तो उनको भी चिंता की कोई बात नहीं है। वो थोड़े से शुरुआत करें तो बड़े चमत्कार कर सकते हैं। एक जैपनीज टेक्निक है काइज़न, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे। एक बहुत प्रसिद्ध किताब है 1%। वो 1% क्या कहता है? वो थ्योरी ये है कि आप केवल 1% सुधार से कोई प्रक्रिया प्रारंभ करें, धीरे धीरे धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे परिणाम आएंगे, उत्साह बढ़ेगा। एक साथ शरीर को बहुत ज़्यादा अनुकूलन नहीं करना पड़ेगा, मन को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो बहुत धीरे धीरे सहन करने की स्थिति तक में बदलाव जब आप करते हैं और फिर जब धीरे धीरे परिणाम आने शुरू करते हैं तो आत्मबल बढ़ता जाता है और चमत्कार हो जाता है। अगर किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता तो ऐसा निर्णय मत लीजिए कि कल से 4 घंटे रोज पढ़ूंगा, क्योंकि आप पढ़ लेंगे, 1 या 2 दिन रोज नहीं पढ़ पाएंगे। बल्कि यहां से शुरू करें कि मैं आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम को पढ़ूंगा, फिर 10 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद, अब मैं इसको बढ़ा के 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम करूंगा। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो फिर चमत्कार हो जाएगा। तो अब चमत्कार तो एक और हो सकता है, देखो मौसम इतना अच्छा है, कल को बारिश हो जाए तो ये रेत का जो गर्द है आसमान में छाया हुआ, ये नीचे आ जाएगा और खूबसूरत नजारा होगा, मौसम अच्छा हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि यार ये तो कल्पना कर रहा है। भाई कल्पना करने में कौन सा पैसा लग रहा है? सुखद कल्पना करें तो जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। अच्छा कुछ होया नहीं, मन को तो अच्छा लगेगा ना, और फिर इसमें किसी ऐसे से मिलना हो जाए जिसकी आप बहुत अरसे से तमन्ना कर रहे हैं, तो फिर तो भाई वाकई वाकई चमत्कार हो जाएगा।

वो मजबूती से जम जाएंगी और फिर उसे वृक्ष का रूप लेने में आसानी रहेगी। हम जीवन में कितने वृक्ष लगाते हैं, उससे हमें जो संतोष मिलेगा, उससे जो लाभ आने वाली पीढ़ियों को होगा, उसकी कोई कल्पना नहीं है। तो हम अच्छा काम करते चलें, बढ़ते चलें, जीवन में आगे बढ़ना ही नियति है, परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत किस कार्यक्रम में, ये सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है प्यासा सावन।

ये गीत था कुमार शानू की आवाज में, फिल्म का नाम था 1942 अ लव स्टोरी। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं फिल्म प्यासा सावन का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर की ढूंढ चैनल से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के ठीक 8 बजने को ही अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।

0: को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। घर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम

0: रिलायंस से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई है जो इन्होंने शेयर की है ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा इनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर

0: पर विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिनीहार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवली। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि यह गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब यह गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात

0: टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर आरसीबी का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नौलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू शेयर हिज थॉट्स इन मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी एट 11 एएम टुडे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज इंडियन नेवी फोर्स पाकिस्तान नेवी टू रिमेन कन्फाइंड टू इट्स पोर्ट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। म्यांमार प्रेसिडेंट यू मिन आउंग लैंग अराइव्स इन न्यू दिल्ली ऑन अ 5-day विजिट टू इंडिया, ऑफर्स प्रेयर्स एट महाबोधि टेम्पल इन गया। Center notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था।
4: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and prepared throughout the operation.
2: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his 5-day visit to India yesterday by arriving at Bodh Gaya in Bihar, where he prayed at the Mahabodhi Temple.

0: Tamil Nadu to defeat Sri Lanka till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: सौरभ इस कार्यक्रम में हाथ सुनिए डॉक्टर संजय शिवानी से उनकी वार्ता। समकालीन हिंदी कविता में नायिका बिरला बोध।
2: आकर्षण एवं उपेक्षा के दुकोलों में प्रवाहित नारीत्व की चिंतन धारा ने जीवन के व्यापक क्षेत्र को अपने स्नेह, समर्पण, ममता, करुणा, उदारता आदि उदात्त गुणों के अमृत से जितना अभिसिंचित किया, उसका समुचित फल नारी कभी भी नहीं चख पाई। युगों से अपने निजी जीवन प्रश्नों के उत्तर खोजती हुई नारी आज भी पुरुष के लिए ही नहीं, स्वयं के लिए भी प्रश्न बनी हुई है। सुदीर्घ अतीत की पगडंडियों के अन्य गैर भुवाओं उतार चढ़ाव में अंकित उसका अश्रु हासमय इतिहास दुनिया होते हुए भी अस्तित्वहीन नहीं हो पाया है। अपनी लघुता में भी महता, शीतलता में भी जीवन की उष्मा तथा सुंदर तन में भी शिवम छिपाए रहने वाली नारी सदा से समाज का ही नहीं, साहित्य का भी प्रेरक तत्व रही है। युगों से कवि जीवन की इस उष्मामयी, उल्लासमयी एवं अनुरागमयी अरुण किरण को काव्य जल का अर्घ चढ़ाते रहे हैं। कभी आशक्ति से तो कभी अनुराग से, कभी आकर्षण से तो कभी आदर से, जिस प्रकार नमी से अरुण किरण के संस्पर्श से जल, थल, अतल, तल, जड़, चेतन कोई भी अछूता नहीं रह पाता, इसी प्रकार समाज का कोई कोना, साहित्य की प्रत्येक विधा नारी से शून्य नहीं है। प्रबंध हो या मुक्तक, कविता साम्राज्य में तो अपने गुण के सामने के कारण वे उसकी अधिष्ठात्री ही रही है। सृष्टि के उषा काल से ही नारी नर की कोमल भावनाओं में चेतना फूंकती और उसकी कल्पनाओं में रंग भरती आई है। चिरकाल से नारी की सुकुमारता, कोमलता, विनम्रता, त्याग, कर्तव्य परायणता एवं मधुरता की प्रतीक तथा पुरुष शक्ति शौर्य एवं कठोरता का प्रतीक रहा है। नारी का मानसिक विकास पुरुष के मानसिक विकास से अधिक द्रुत गति से होता है। उसका स्वभाव अधिक कोमल और प्रेम घृणादि भाव अधिक तीव्र तथा स्थायी होते हैं। इन दोनों प्रकृतियों में उतना ही अंतर है जितना विद्युत और झड़ी में। एक से शक्ति उत्पन्न की जा सकती है परंतु प्यास नहीं बुझाई जा सकती। दूसरी से शांति मिलती है परंतु पशुबल की उत्पत्ति संभव नहीं है। नारी से ही नर शक्तिवान कहलाता रहा है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक, पाषाण काल से लेकर स्पुतनिक युग तक नारी नर के जीवन का पोषण एवं उन्नयन करती रही है। आज तक उसने अपनी ममता, वात्सल्य, त्याग, करुणा, कोमलता से पुरुष की कठोरता एवं रुक्षता को कम कर जीवन में एक स्निग्ध अजस्र प्रेम धारा बहाने में अपूर्व योग दिया है। यह सत्य है कि संघर्ष पुरुष की जीवन प्रेरणा रहा है तथा नारी का आत्मसमर्पण ही उसकी जीवन शक्ति का प्रमाण रहा है। आंचल में दूध और आंखों में पानी लिए त्यागमय नारी सामाजिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग रही है और यह स्पष्ट है कि हमारी आदिमकालीन गृहस्थी का शिलान्यास ही नारी की कोमलता के करकमलों से हुआ होगा। पुरुष की कठोरता की क्रेम द्वारा नहीं, अपनी रुक्षता के कारण जहाँ पुरुष प्रतिशोध लेता है वह नारी अपनी कोमलता के कारण क्षमा कर देती है। पुरुष जहाँ शौर्य का प्रतिरूप है, नारी वहाँ प्रेरणा की प्रतीक। प्रागैतिहासिक काल में नारी की स्थिति पुरुष से अच्छी थी। उस समय का समाज पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक रहा होगा। प्रारंभिक समाज के सभी रूपों में वंश माता के नाम से ही चलता था क्योंकि सामूहिक विवाह प्रथा में अकेली माता ही निश्चित रूप से पहचानी जा सकती थी। धीरे धीरे पुरुष अपनी कठोरता, शौर्य आदि के कारण संपत्ति के निर्विवाद स्वामी होते गए। निस्संदेह यह संक्रमण मात्र अधिकार के उन्मूलन अथवा नारी जाति की पराजय के रूप में ही माना जाएगा। जो हो, जब से मानव समाज पितृ सत्तात्मक बना है तब से नारी जाति का इतिहास करुणांकित ही रहा है। विश्व इतिहास के पृष्ठ चाहे नारी जाति की करुण कथा से काले नहीं रंगे हों, किंतु मानव जाति का जीवन अवश्य अपने अधांग के कुंठित होने से समुचित विकास नहीं कर सका। पुरुषों द्वारा निर्मित कलुषित कानून कायदों की कोठरियों में कैद कर दिए जाने से नारी जाति ने बिना कराहे जो कष्ट सही है उनकी कथा करुण ही नहीं करुण

और उसे लिपिबद्ध करने में हर लेखनी असमर्थ ही रही है। प्राय सभी युगों में पुरुष रूपी सूत्रधार ने विश्व रंगमंच पर नारी कठपुतलियों को अपनी उंगलियों के इशारों पर जैसे चाहा नचाया है। नारी जीवन के इस नाटक के कुछ दृश्य अवश्य सुखमय प्रतीत होते हैं, किंतु वस्तुतः इस नाटक के सभी अंग दुखमय ही रहे हैं। नारी को देवी कहकर पुरुष ने उसे उसके अधिकारों से वंचित करने का अच्छा नाटक खेला है। देवी कहकर पुरुष ने उसे पाषाणी प्रतिमा बना दिया और उसके मानवीय जीवन को भी दुर्वह कर दिया। केवल देना ही देना और सहना ही सहना उसके हिस्से में रह गया और समर्पण उसके भाग्य में कील सा गड़ गया। जीवन का इससे करुण प्रहसन और क्या हो सकता है कि देवता की भूख को समझने वाला पुरुष मानवी के मन की भूख प्यास को नहीं समझ सका। कभी भी नारी को पुरुष के समकक्ष मानने लगे। जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु न विभक्ति। सीता अनुसुईया सती, अरुंधति अनुहारी, शील लाज विद्या दुगुण, लहो सकल जग नारी। समकालीन परिवेश में नारी की महत्ता भी घटती बढ़ती रही है। पुनरुत्थान के आंदोलनों ने जिन परंपरागत मूल्यों को स्वीकृति दी, उनमें नारी गौरव भी था। श्रद्धा, राधा, यशोधरा, गीता, सीता, रत्नावली आदि अनेक नारी पात्रों के पुनः सृजित चरित्र द्वारा इस मूल्य का प्रतिपादन किया गया है। इनमें एक ओर तो नारी के भोग्या रूप का निषेध है, दूसरी ओर उसे समाज की अत्यंत विशिष्ट इकाई माना गया है, जो अपने त्याग और अन्य गुणों द्वारा समाज का बहुत उपकार करती रही है। समकालीन अधिकांश प्रबंध काव्यों में नारी की गरिमा को स्थापित किया गया है, तो मुक्तक काव्यों में नारी गरिमा की छवि अधिक सबल रूप में उभर कर सामने आई है। रामानंद तिवारी कृत पार्वती, अतुल कृष्ण गोस्वामी कृत नारी, दिनकर कृत उर्वशी, मिथिल शरण गुप्त कृत विष्णुप्रिया, नरेंद्र शर्मा कृत द्रौपदी इत्यादि प्रबंध काव्यों की मूल प्रेरणा नारी गरिमा ही है। नारी का गौरव प्रतिपादन करने में सामाजिक, दार्शनिक, पौराणिक और मनोवैज्ञानिक आदि अनेक संदर्भ भी मिल गए हैं। रामानंद तिवारी के पार्वती शीर्षक काव्य में दानवों के नाश हेतु देवताओं के संचित तेज से नारी रूपा दुर्गा का अवतरण हुआ है। कवि के अनुसार नारी केवल श्रद्धा ही नहीं है, नरकी शक्ति भी है। इसी शक्ति से शंकर त्रिपुरारी बने। इस प्रकार नारी सृष्टि का सृजन एवं पालन करती है और मानव को भगवान के पद तक ले जाने की शक्ति बनती है। रूप चेतना शक्तिमयी कर्मोन्नत नारी, मानव को भगवान बना होती बलिहारी। अतुल कृष्ण गोस्वामी ने नारी शीर्षक काव्य में नारी के विविध रूपों का वर्णन करते हुए उसे त्याग जैसे गुण का भी उल्लेख किया है। नारी परिवार के पालन एवं क्षेम में अपनी देह सुखाती है, गृही के संतोष हेतु अपने कष्ट भूल जाती है। नारी की यह विशेषता ही परिवार और समाज को स्थिर रखती है। कवि ने उसे मानव की मार्गदर्शिका भी कहा है। नारी ही संपूर्ण राष्ट्र है, धर्म कर्म संस्कृति युग चेता, जन्म सिद्ध जन की समाज की देश जाति मानव की नेता। नारी गरिमा का यह चरम बिंदु है और यह स्वाभाविक ही है कि कवि इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, इस भव में शोभित है नारी, नारी से शोभित है भव। स्त्री के अनेक रूपों में दिनकर ने अंततः उसके त्यागमय रूप को ही महान बतलाया है। मातृत्व उसके त्याग का ही प्रमाण है। नरेंद्र शर्मा ने भी नारी को नर की नैया चलाने वाली कहा है। नर की जीत हो या हार, मूल्य नारी ही चुकाती है। नारी की सामाजिक महत्ता का वर्णन करते हुए कवि का कथन है, आर्या भार्या नहीं उपकरण, वहन कंचन मलेच्छा, आर्या नारी पावक तनया, मूर्ति मति देविच्छा। नारी गरिमा की स्थापना की उपयुक्त पद्धति सीधी और सरल है। जहाँ किसी चरित्र द्वारा अथवा प्रत्यक्ष वर्णन द्वारा ही समाज में नारी की गौरवमय स्थिति को वांछनीय बतलाया गया है, व्यवहार में नारी को नर से नीचा दर्जा दिया जाता रहा है। मध्य काल में तो यह स्थिति रही ही है, आधुनिक काल के प्रारंभिक चरणों में भी इस स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हो पाया है। नारी मुक्ति का आंदोलन भारत में व्यावहारिक स्तर पर बहुत बाद में आया। छायावादी युग में नारी की गरिमा भावना स्तर की ही रही है। प्रगतिवादी काव्यों में नारी मुक्ति के यथार्थ रूप को कुछ हद तक अभिव्यक्ति मिल सकी। दमयंती सावित्री सीता, इनका प्रियतमी युग बीता, पति धर्म गुलामी का बंधन, हे ए नारी तुम्हारा अभिनंदन, नर मुंडों की माला लेकर अन्यायों की आहुति देकर शिव की छाती पर नृत्य करो, भीषण ज्वाला आरक्त करो। यथार्थ स्तर पर नारी को जिन दो रूपों में गौरव दिया जा सकता है वे है नारी और नर की समता, नारी की स्वतंत्रता। नारी को पुरुष से श्रेष्ठ तो माना जाता है, पूज्या भी कहा जाता है, किंतु वास्तव में उसके अधिकार पुरुष से बहुत कम है। दिनकर कृत रश्मि रथी में कुंती नारी को अबला ठहराती है। धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योशिता कुमारी है, कठिन बंद करना

राज के मुख को सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को रांगली राघवों ने समाज ने नारी की स्थिति का प्रश्न आर्थिक स्तर पर भी उठाया है। आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर रहने के कारण ही उसे पुरुष की दासी बताया है। पुरुष से न तो सतीत्व की अपेक्षा है न एक निष्ठा की, इसलिए नारी की गरिमा पुरुष के समान अधिकार में ही निहित है न कि उससे अपेक्षा भरे व्यवहार में। नर नारी समता के साथ ही नारी स्वतंत्रता का भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। नारी स्वतंत्रता का क्या रूप हो इसकी कोई स्पष्ट कल्पना नहीं की गई है। निरंकार देव जैसे कवि नारी की संपूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हैं। संपूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ सभी मर्यादाओं का त्याग भी हो सकता है और नर के समान स्वतंत्रता भी। पहली स्थिति तो मानवीय समाज की कल्पना से परे है, दूसरे में नर के साथ नारी की समानता का ही संकेत है। त्रिलोचन सहचर रूप में नर नारी द्वारा एक नवीन समाज की रचना का सपना देखते हैं। इस प्रकार नारी गरिमा के परंपरागत रूप के अतिरिक्त उसे नर के समान अधिकार दिलाने में ही उसकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। नारी के उपयुक्त रूपों के चित्रण विशेषतः नारी की हेय स्थिति के संकेत अथवा नर नारी समता के प्रतिपादन को हम नारी गरिमा के प्रतिकूल नहीं मान सकते। यह अवश्य है कि नारी गरिमा को मूल्य मानने वाले कवियों ने नारी को बहुत ऊंचा दर्जा प्रदान किया है, किंतु उसके वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए उसे समाज में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण पद दिलाने का प्रयास भी उसी दिशा के अनुकूल कहा जाएगा। हाँ, पूर्ण स्वातंत्र्य की कल्पना में विघटन की आधार भूमि विद्यमान है।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलबारो चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हुए हैं। ये जो आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम में, आइए सबसे पहले सुनते हैं इंद्रजीत छंदानी के स्वर में ये प्रस्तुति।

0: सुमन संगीत और आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारो चैनल से सुन रहे थे। इस समय प्रातः के 9 बजने को है। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पेश है न्यूज डेस्क से मन की बात कार्यक्रम पर डॉ. सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
2: साल 2014 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से संवाद का एक प्रभावी मंच है। इसमें प्रधानमंत्री सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, साथ ही आम नागरिकों की उपलब्धियों और प्रेरक कहानियों को भी सामने लाते हैं। ये कार्यक्रम जन भागीदारी को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हर महीने के अंतिम रविवार को ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शौर्य वाटिका खुला नौसेना संग्रहालय है। श्री सिंह ने बताया कि नौसेना को दुश्मन पर निरंतर दबाव बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी और ताकत के साथ अरब सागर में तैनात किया गया था।
3: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ. सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉ. सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
4: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: फुलेरा के पास हिरनोदा गांव में थार ड्राई पोर्ट बनाया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल इसका उद्घाटन किया। ये हस्ती पेट्रोकेमिकल और शिपिंग लिमिटेड HPCSL की इकाई है। इससे सड़क और रेल मार्ग

0: जरिए कंटेनर आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 92,000 से ज्यादा जल स्रोतों और 42,000 से अधिक सरकारी भवनों की सफाई की गई। 52,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया। वहीं हरियाणा और राजस्थान में पौधरोपण के लिए 36,000 से ज्यादा पिट खोदे गए। साथ ही करीब 32,000 कलश यात्राएं निकाली गईं। अभियान के तहत आज प्रभात फेरी, रैली, श्रमदान, बावड़ियों की साफ सफाई करने के साथ ही नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। वहीं कल खेती संबंधी कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। इससे सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और समूचे वातावरण में धूल का गुबार छा गया। पीली काली आंधी से दिन के समय ही अंधेरा हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज अंधड़ से कई जगह घरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लगे टीन शेड और सोलर पैनल उड़ गए। विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। वहीं खरीद केंद्रों पर रखी गेहूं की बोरियां भीग गई। उधर अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू और बारा में अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। जयपुर जिले में ग्रामीण इलाकों में बरसात के साथ ओले गिरे। बरसात से तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज 11 शहरों में आंधी बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की आत्मा साहित्यकारों में बसती है। साहित्य केवल शब्दों का सृजन नहीं है बल्कि संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का संवाहक है। श्री बिरला कल कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लेखकों से प्राचीन साहित्य कृतियों के डिजिटलीकरण करने का आग्रह किया जिससे भारतीय ज्ञान परम्परा को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके।
1: भारत के साहित्यकार, कवि, लेखकों ने अलग अलग कालखंड के अंदर भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया, देश में रचनात्मक दिशा दी, रचनात्मक दृष्टिकोण दिया और रचनात्मक विचार दिया। आने वाली पीढ़ियों को भारत के साहित्यकार, गीतकार, लेखकों से जो उनके ज्ञान के भंडार हैं उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि हम भारतीय संस्कृति के विचार दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाकर देश और राष्ट्र की प्रगति और देश राष्ट्र की सेवा में लगे रखें।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश में 22 मई से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। 23 मई तक चलाए गए इस अभियान में 2,000 से ज्यादा चालान किए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध संबंधी परामर्श सत्र रखे गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने लोगों से तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी टक्कर होगी। ये फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे

गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

915.05 मीटर में 1,395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमारो चैनल है। इस समय प्रातः के 9:10:39 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत किस कार्यक्रम में, ये सबसे पहले सुनते हैं सीमा मिश्रा के स्वर में ये लोकगीत।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं स्वाति शर्मा के स्वर में ये

ऐसे ही पैसे की निवेश करती है स्मार्टफोन वाले ही। आज वो बीमार है और उन्होंने बच्चों की प्रतीक्षा करने अपने कार्यक्रम मुकुल की तो सुनते कार्यक्रम मुकुल प्रस्तुत कर रहे हैं अनिता गोस्वामी।

जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अनमिति दीदी और आप सुन रहे हैं आपका प्यारा सा कार्यक्रम मुकुल। तो बच्चों, देखते ही देखते गर्मी की छुट्टियां तो आधी से ज्यादा निकल भी गई हैं, है ना। पता ही नहीं चला ना कि 15 दिन कब फौरन से निकल गए। अच्छा, तो कैसे जा रही है आपकी गर्मी की छुट्टियाँ? जानती हूँ, कोई बच्चे तो नानी के घर में मजे कर रहे होंगे, कोई कर रहे होंगे कहीं घूमने जाने की प्लानिंग, या फिर मेरे ख्याल से घूमने निकल ही गए होंगे, है ना। और कोई तो इतनी गर्मी में घर

जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अनमिति दीदी और आप सुन रहे हैं आपका प्यारा सा कार्यक्रम मुकुल। तो बच्चों, देखते ही देखते गर्मी की छुट्टियां तो आधे से ज्यादा निकल भी गई हैं, है ना। पता ही नहीं चला ना कि 15 दिन कब फूर से निकल गए। अच्छा, तो कैसे जा रही है आपकी गर्मी की छुट्टियां? जानती हूँ, कोई बच्चे तो नानी के घर में मजे कर रहे होंगे, कोई कर रहे होंगे कहीं घूमने जाने की प्लानिंग, या फिर मेरे ख्याल से घूमने निकल ही गए होंगे, है ना। और कोई तो इतनी गर्मी में घर पर ही आराम करना चाह रहे होंगे, है ना। और ऐसा करते करते 15 दिन तो आपके निकल गए और अब बची है बस जून जून की छुट्टियां। तो चलो फिर दीदी के साथ मिलकर ये सोचते हैं कि बाकी बची छुट्टियों को मजेदार और यादगार कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले तो एक काम कर लो, अगर आपने अभी तक हॉलीडे होमवर्क नहीं किया है तो वो पूरा कर लो फटाफट से, ताकि आखिरी दिनों में भाग दौड़ ना करनी पड़ जाए। और अगर कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। और अब जो बच्चे नानी के घर में रहकर मजे कर रहे हैं, वो जरा ध्यान से सुनो अपनी दीदी की बात। नानी से तरह तरह की फरमाइशें आप कर रहे होंगे, है ना, कि नानी ये बनाना, नानी वो बनाना, नाना से कहानियां भी सुन रहे होंगे बहुत सारी, है ना। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको ये भी करना है कि नाना नानी की छोटी छोटी सी मदद भी करनी है। जैसे नानी के साथ में किचन में हेल्प करा दी, नाना के छोटे मोटे काम कर दिए, जैसे उनको अखबार पढ़ के सुना दिया, उनका हाथ पकड़ के सैर पर ले गए, है ना। पता है उनको ये सब करोगे ना अब तो बहुत अच्छा लगेगा। और अब जो बच्चे बाहर घूमने गए हैं, ये जाने वाले हैं और वहां से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, या फिर जो जाने वाले हैं वो पैकिंग करते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनके लिए दीदी यही कहना चाहती है कि घूमिए फिरिए एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ ही साथ में आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना, वहां पे सिविक सेंस का ध्यान रखना है ना। कचरा इधर उधर नहीं फैलाना है, डस्टबिन का इस्तेमाल करना है और ज्यादा शोर शराबा उधर नहीं करना है। और इतनी गर्मी में घूमते समय पानी जरूर पीते रहना, कैप पहनना, सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना और सनग्लासेस भी पहनकर ही घूमने निकलना। सनग्लासेस और कैप के साथ में फोटोज भी आपकी बड़ी सुंदर आएंगी। और जो बच्चे घर पर छुट्टियां बिता रहे हैं, वो सिर्फ सोते ही मत रहिएगा और ना ही पूरा दिन बस मोबाइल की बैटरी खत्म करनी है। आपको भी मम्मी की मदद करनी है ना। अब देखो कल आंटी भी आई है, तो मम्मी साफ सफाई में लग रही होगी, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देना, है ना। कुछ क्रिएटिव करना है तो ड्राइंग कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, इंडोर गेम्स खेल सकते हो, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है ना बाहर, है ना। और इंडोर गेम्स के लिए तो मम्मी पापा से अच्छे साथी कोई हो ही नहीं सकते हैं। उनसे पूछना कि उनके बचपन की छुट्टियां ऐसे ही गेम्स खेलते हुए बीती है। और हाँ, ये जो पानी पीते रहने की और साफ सफाई का ख्याल रखने की बात जो मैंने अभी आपसे की है ना, वो सभी बच्चों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वो बाहर घूमने गए हो, नानी के घर पे हो या फिर हो अपने घर पे, समझे। तो बच्चे अपनी छुट्टियों को यादगार बनाइए, कुछ नया सीखिए, बड़ों की मदद कीजिए और कीजिए ढेर सारी मटर गश्ती।

बच्चों, ढेर सारी मटर गश्ती के बाद जब गर्मी सताती है ना, तो हम फटाफट से कूलर, पंखे, एसी के आगे बैठ जाते हैं, ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, मम्मी से, दादी, नानी, बुआ या मौसी से मिल्क शेक, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स की फरमाइशें कर लेते हैं, है ना। लेकिन आपने सोचा है कभी कि इन गर्मियों में हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा? तेज धूप, गर्म हवाएं उन्हें भी तो परेशान करती होंगी ना। इसीलिए बच्चों, जैसे हम अपनी केयर करते हैं, हमें उन बेजुबान प्राणियों का भी ख्याल रखना चाहिए। पता है, इसी बात पर मुझे एक कविता याद आ रही है जो स्कूल टाइम पर मैंने पढ़ी थी, कि मेरे घर के पास पेड़ पर चिड़िया करें बसेरा, चू चू चहक चहक उड़ जाती हो जब नया सवेरा, दाना पानी की तलाश में हो ना उन्हें हैरानी, इसीलिए बर्तन में रखती उनको दाना पानी, पास पेड़ के बरामदे की भीत बची जो खाली, उसमें ऊंचाई पर

पट्टियां एक लगा ली, काकुल और बाजरा उसमें मैं चुगने को रखती, चुगते हुए चहकती है जब मुझको अच्छी लगती। गर्मी के मौसम में कोई प्राणी ना झेले लाचारी, इसलिए इन सब की चिंता मेरी जिम्मेदारी। बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अच्छे इंसान वही होते हैं जो सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि पशु पक्षियों से भी प्यार करते हैं। प्यार बांटने से दुनिया और भी खूबसूरत हो जाती है ना। तो इस गर्मी में अपने साथ साथ इन बेजुबान दोस्तों का भी ख्याल रखना, और जब आप दाना और पानी रखकर आओगे ना, तो चिड़िया को देखना और सारे पशु पक्षियों को देखना कैसे खुश होकर खुशी से गाएंगे।

बच्चों मुझे पूरा भरोसा है कि दीदी की बात सुनकर आपने अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का काम तो कर ही लिया होगा और आप सभी बच्चों को दीदी की तरफ से इस नेक काम के लिए खूब सारी शाबाशी। और अब होने चला है आपके नाश्ते का टाइम, क्योंकि बातें करते करते भूख भी तो सता रही होगी ना, और आपकी फरमाइशों की लंबी सी लिस्ट भी तैयार होगी, है ना, कभी बर्गर, पिज्जा, सैंडविच या फिर कुछ और। और नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन बच्चों, क्या सिर्फ स्वाद ही जरूरी है खाने में या फिर उसके साथ सेहत भी? इसी बात को समझो एक मजेदार कहानी के माध्यम से। एक बार क्या होता है कि एक चटोरे फास्ट फूड कॉर्नर में बर्गर बन, खीरा ककड़ी और बहुत से फूड आइटम्स आसपास रहा करते थे। ककड़ी सैंडविच बनाने के काम आती थी और बन बर्गर बनाने के काम आता था। रात को जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता ना, तो सभी फूड आइटम्स आपस में बातचीत करते और अपना मन बहलाते। कभी छोटी मोटी तकरार भी हो ही जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रेस्टोरेंट बंद होने के बाद बर्गर निकला घूमने और सामने से आती दुबली पतली ककड़ी से टकरा गया। ककड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, पर बर्गर जमीन पर गिरकर चित हो गया और उसके अंदर जो भरा हुआ सामान था ना, वो बाहर निकलकर गिर गया। अब ये देखकर

दोस्त होते हुए भी पिज्जा और पास्ता भी ककड़ी के साथ में हंस पड़े। अब बर्गर को गुस्से में देखकर नूडल्स ने सबको हंसने से रोका और कहा कि भाई सब चुप हो जाओ, हंसो मत, देखो बर्गर नाराज हो रहा है। तब एक ककड़ी ने कहा कि इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है, है ना, बर्गर तो सचमुच उसको डाइटिंग की जरूरत है, कितना मोटा हो गया है ना, चल भी नहीं पा रहा है। बर्गर ने गुस्से में बोला कि अच्छा, मुझे तुमसे फिटनेस का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, घास फूस कहीं की, जानती हो बच्चे मुझे कितना पसंद करते हैं। इतना सुनकर ककड़ी का साथी टमाटर, जो कि सैंडविच को हेल्दी बनाने में उसका साथ देता था ना, वो भी कहने लगा कि लोग है ना पीठ पीछे तुम्हारे बीमारी का घर कहते हैं। अब ये सुनकर बर्गर और नाराज हो गया और टमाटर से कहने लगा, जैसे तुम तो बड़े पतले हो, अपनी तरफ क्यों नहीं देखते हो। अब मामला बढ़ने लगा तो मामले को बढ़ता हुआ देखकर पिज्जा बेस और पैटीज ने जैसे तैसे सबको शांत किया, अब सब सो गए। अब अगले दिन फूड कॉर्नर से फिर से सज धस कर तैयार हो गया था। पिज्जा अपनी टॉपिंग के साथ तैयार था, बर्गर आलू टिकिया के साथ तैयार था, नूडल और पास्ता भी उबले हुए पानी में नहा धोकर तैयार हो गए थे और टमाटर ककड़ी सैंडविच में जाने को तैयार थे। अब तभी क्या हुआ कि दो बच्चे अपने पापा के साथ में फूड कॉर्नर में आते हुए दिखे। सब फूड आइटम्स बड़े खुश हो गए और मुस्कुरा कर बच्चों का स्वागत करने लगे। बर्गर और ककड़ी एक दूसरे को छेड़ने लगे। ककड़ी ने कहा कि देखो लड़का तो बिल्कुल तुम जैसा है, और बर्गर बोला लड़की भी तुम जैसी है, बिल्कुल ककड़ी सी। लड़ाई फिर से बढ़ने ही वाली थी कि दोनों बच्चे आगे आए। लड़के ने कहा कि मैं तो बर्गर लूंगा, तो बर्गर फूल के कुप्पा हो गया। लड़की बोली मैं लूंगी सैंडविच, तो ककड़ी मुस्कुराने लगी। तभी पापा ने कहा कि सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन मिक्स एंड मैच करके, यानी कि टेस्टी भी और हेल्दी भी। पापा ने रेस्टोरेंट वाले भैया से कहा कि भैया बर्गर में से आलू टिक्की को थोड़ी छोटी कर देना और टमाटर के साथ में ककड़ी भी डाल देना, और सैंडविच में चुकंदर के लच्छे डालकर थोड़ा सा बटर भी लगा देना। अब भैया ने वैसा ही कहा और वैसा ही किया, और ऐसा ही करते ककड़ी टमाटर बर्गर सभी साथी बन गए और उनकी दोस्ती हो गई और वो मुस्कुरा उठे और हो गया सारा फूड टेस्टी भी और हेल्दी भी। तो बच्चों ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि स्वाद के साथ साथ सेहत की दोस्ती सबसे अच्छी होती है, और जब स्वाद और सेहत के साथ में छुट्टियां हो तो दिल तो यही चाहता है ना कि कभी ना बीते ये चमकीले दिन।

बच्चों, हम छुट्टियों को यादगार और मज़ेदार बनाने की सोच रहे हैं ना। कोई कुछ क्रिएटिव काम सीखेगा, कोई किचन में हेल्प कराएगा, कोई किसी अच्छी सी जगह जाकर वहाँ पे ढेर सारी अच्छी यादें लेकर आने वाला है, और टेस्ट के साथ में हेल्थ का भी हम ख्याल रखेंगे। बच्चों, छुट्टियों में एक और अच्छी आदत शुरू की जा सकती है, और वो है बचत की आदत। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, छुट्टियों में मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहता है। कभी हमसे कोई मिलने आ गया, कभी हम किसी से मिलने चले गए, है ना। और जब विदा लेने का वक्त आता है तो हमसे बड़े लोग प्यार से हमारे हाथों में शगुन के पैसे भी रख देते हैं, तो आप उनका क्या करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौड़कर सीधा आइसक्रीम या चिप्स लेकर आ जाते हो? अब ये बात सुनकर आप धीमे धीमे मुस्कुरा रहे होंगे, है ना, यानी कि ऐसा ही करते हो, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी छुट्टियां हैं तो थोड़ा अपने मन का भी कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि अगर हम उन्हीं पैसों से थोड़ा थोड़ा सा बचाएंगे तो यही छोटी छोटी बचत आगे चलकर एक बड़ी खुशी में बदल जाएगी। आपके पास गुल्लक तो होगी ना, अरे वही पिगी बैंक। पता है, यही छोटा सा पिगी बैंक सीख देता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बचत एक दिन बड़ा रूप ले लेती है। और आपको पिगी बैंक के बारे में एक मजेदार बात बताऊं, क्यों इसका नाम पिगी बैंक पड़ा? थोड़ा सा रेडियो के और करीब आ जाओ और ध्यान से सुनो। 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक प्रकार की खास मिट्टी, पिग मिट्टी हुआ करती थी। उससे प्लेट, बोतलें, बर्तन बनाए जाते थे, और लोग अपने पास रखे छुट्टे पैसों को सुरक्षित रखने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। और धीरे धीरे इसी PYGG को PIG पिग समझा जाने लगा, और कुम्हार PIG यानी कि सुअर के आकार के गुल्लक बनाने लगे। समय के साथ साथ इसके आकार और बनावट में और बदलाव आ गया, और अब तो आपने भी देखा होगा ना कि बाजार में तरह तरह के आकार के पिगी बैंक मिलते हैं। मिट्टी के अलावा प्लास्टिक, स्टील और दूसरी धातुओं से भी इसे बनाया जाता है। तो कोई बढ़िया सा अपनी पसंद का गुल्लक लेकर आ जाओ अगर नहीं हो तो, और शुरू कर दो बचत की अच्छी आदत। जब भी पॉकेट मनी या शगुन के पैसे मिले ना, तो उनका थोड़ा सा हिस्सा अपनी प्यारी सी गुल्लक में जरूर डालें। पता है, मैं भी डाला करती थी, और मेरी दादी पता है क्या करती थी कि हर एक सिक्का जो गुल्लक में जाता है वो सपनों के आशियाने की एक नई ईंट बनाता है।

बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि इंडोर गेम्स खेलने के लिए है ना, मैंने कहा था ना कि मम्मी पापा से पूछो, वो बड़े छुपे रुस्तम हैं, उनके बचपन की छुट्टियां तो लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी और ढेर सारे मजेदार गेम्स से भरी रहती थी। पता है इन गेम्स से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप भी बताना मम्मी पापा को कि लूडो का पुराना नाम था पच्चीसी, जिसे राजा महाराजा खेला करते थे और इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। सोचो बच्चों, हम शाही गेम खेलते हैं घर में, और ऐसा ही एक गेम है शतरंज यानी कि चेस, जिसे दिमाग को सबसे मजेदार व्यायाम माना जाता है। कहते हैं कि इसके शुरुआती चार चालों के बाद ही इसके खेलने के 31 अरब से ज्यादा अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और सांप सीढ़ी का खेल, इसके पीछे भी बहुत प्यारी सीख छुपी होती है। पहले इसे मोक्ष पट्टम कहा जाता था, इसमें सीढ़ियां अच्छे कामों का और सांप बुरी आदतों का संकेत देते थे, यानी कि अच्छे काम करोगे तो ऊपर उठोगे और बुरे काम करोगे तो नीचे जाओगे। कितनी अच्छी सीख है ना। तो बच्चों, इन गर्मियों की छुट्टियों में मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रख लेना और फैमिली के साथ में बैठकर पुराने मजेदार गेम्स खेलना, और लड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खेल में हार जीत तो लगी रहती है। उम्मीद है बच्चों आप छुट्टियों का भरपूर आनंद लेंगे, सेहत, साफ सफाई का और अच्छी आदतों का ध्यान रखेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और अब दीजिए आपकी दीदी अनविती को अनुमति। जय हिंद।

ये जो सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म मोहरा का ये गीत, स्वर अलका याग्निक और उदित नारायण का है।

आशिकम और शब्बीर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था बेताब। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में अगला गीत। फिल्म का नाम है जख्म।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारो चैनल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में अगला गीत। फिल्म का नाम है यस बॉस।

प्रेम संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारु चैनल से सुन रहे हैं। ये गीत आप सुन रहे हैं आवाज कुमार शानू की और अलका याग्निक की है। फिल्म का नाम है यस बॉस।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाश वाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी, जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: कर साथ।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

स्वास्थ्य कुमार शानू, अलका याज्ञनिक और साथियों की फिल्म का नाम था करण अर्जुन। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर की ढोलमारू चैनल से सुन रहे हैं।

अलका याग्निक और साथियों को आपने सुना, फिल्म का नाम था ताल। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अंत में आइए सुनते हैं। मैं तेरा आशिक फिल्म का ये गीत स्वर अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण का है।

0: सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारो चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 10:55 होने को हैं। मन की बात कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से होगा।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से।

0: लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: वकीलों के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान

0: चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूं अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे,

0: जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदरजीत जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनुमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदरवीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी।

0: बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात ना होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी

बना शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बनाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के महार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि मल्लार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरी हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल

आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी

यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की

0: बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर

215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड की 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारुत चैनल से बोल रहे हैं।

सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। रात 10 बजे आप सुनेंगे रंगवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम और रात 9:30 पर कार्यक्रम अनुगूंज। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मिनीवेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 12:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन माना तंबाकू एंड निकोटीन जी लत जो मुकाबलो करण उन जे असली चेहरे के बेनकाब करण हर साल 31 मई जे दी दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दी मल्हायो वेंदो आहे ऐं इहो मल्हायण जो खास मकसद माण्हुनि खे तंबाकू खाइण सां थियण वारी गंभीर बीमारियुनि सामाजिक ऐं आर्थिक नुकसानन जे बारे में सुजाग करण ऐं हिन किनी आदत खे छॾण लाइ प्रेरित करण आहे त असां सभिनि खे घर जे आसे पासे में बि अगरि केर बि हिन आदत सां लाॻापो रखे थो त उनखे बि असांखे सुजाग करणो आहे ऐं पंहिंजे समाज खे सिहतमंद बणाइण लाइ इहो क़दम खणण तमामु ज़रूरी आहे ऐं साथियो अचो त पंहिंजो ख़ासि प्रोग्राम आकाशवाणी जा नवे वरीय प्रोग्राम असां ॿुधूं ऐं अॼु असां फोन ज़रिए ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं अमरापुर जे साईं मनोहर साईं जिन सां अचो ॿुधूं हीअ ॻाल्हि ॿोल साथियूं अॼु असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं अमरापुर जे संत मनोहर साईं जिन सां आकाशवाणी जा नवे वरीय प्रोग्राम जे तहत अॼु असां साईं जिन सां उन्हनि खां उन्हनि जी अनुभव ज़रिए ॿुधंदासीं त उन्हनि असांजे प्रोग्राम में छा छा ॿुधो आहे ऐं उन्हनि खे छा छा सुठो लॻंदो आहे साईं तव्हांजो असां फोन ज़रिए आकाशवाणी जे स्टूडियो ते स्वागत था कयूं
1: सतनाम साखी ऐं ही आकाशवाणी त असांजे बचपन जी साथी रही आहे
0: साईं जीअं तव्हां चयो कि तव्हांजी आकाशवाणी खां बचपन जूं घणेई यादूं जुड़ियल आहिनि त सभ खां पहिरीं असांखे तव्हां इहो ॿुधायो कि तव्हां घणी उमिरि जा हुआ तॾहिं खां तव्हां आकाशवाणी ते प्रोग्राम ॿुधण शुरू कया ऐं कहिड़ा कहिड़ा तव्हां प्रोग्राम तॾहिं खां ॿुधंदा आया आहियो
1: सन 1964 में जॾहिं मुंहिंजी उमिरि लॻभॻि 6 साल हुई असां न्यू कॉलोनी में रहंदा हुआसीं
0: जी
1: ऐं 65 में मां अमरापुर दरबार में सतगुरु महाराजनि जे सेवा में पहुतुसि त न्यू कॉलोनी में असांजो परिवार रहंदो माता पिता भाउर भेनरूं मां बि नंढो ॿार हुयुसि रहंदा सिंधी पंचायती स्कूल में पढ़ंदा हुआसीं
0: जी जी
1: उन टाइम में विविध भारतीय जो पंचरंगी प्रोग्राम हलंदो हो उन में मंझंदि जो 4:45 खां 5:30 बजे ताणी 1.5-2 कलाक दक्षिण भारतीय कार्यक्रम ईंदा हुआ जेके तमिलनाडुअ जा ॿिया थिया असां नंढा ॿार हूंदासीं त पोइ सम्झ में ईंदी तमिल सम्झ में ईंदी कान हुई त पोइ हिक ॿिए खे चवंदासीं भई ॾिसो कुंडल वंडल अचे थी पई
0: जी साईं जी जी
1: त उन वक़्तु उहो पंचरंगी प्रोग्राम हलंदो हो अपना घर हवा महल ऐं तव्हांखे ॿुधी ताजुब थींदो त 1974 में
0: जी
1: जेको विविध भारती हलंदो हो उन विविध भारतीअ जा प्रोग्राम ॿुधी उन में जेके फिल्मी गीत हलंदा हुआ मां सतगुरु महाराजनि जी आज्ञा सां उहो विविध भारती हलाए करे उन में जेके गाना हलंदा हुआ मां तबलो उन्हनि जे पुठियां पुठियां वॼाए करे साईं गोविंद राम जी कृपा सां मां तबलो सिखियुसि
0: अच्छा
1: त तबले सिखण जी आज्ञा गुरु महाराजनि कई त उन मञा मूंखे इहो वीचार मिलियो त विविध भारतीअ ते जेके गाना हलनि था उन्हनि सां मां पुठियां पुठियां तबलो वॼायां त उन सां मुंहिंजो हथ साफ़ थींदो ऐं वेंदे वधंदे वधंदे 1980 में मूं तबला विशारद तक कई
0: अच्छा
1: जेका असांजे मास्टर साहब श्री महेश कुमार दलवी साहब ऐं अलवर जे कला भारतीअ वारा ठाकुर किशन महाराज उन्हनि जे हथ हेठि उन्हनि जे छत्र छाया में मां उहा तबले जी तालीम हासिल कई
0: त साईं असांखे इहो ॿुधायो कि तव्हां जेके आकाशवाणी ते विविध भारती ते प्रोग्राम ॿुधंदा हुआ त उन्हनि में तव्हांखे कहिड़ा कुझु ख़ासि जॾहिं थोरो असां वॾा थींदा आहियूं ऐं सुठा लॻंदा हुआ उहे असांखे ॿुधायो पुराणियूं यादूं आहिनि तव्हां वटि घणेई ऐं असांखे ॿुधण सुठो लॻंदो
1: हिकु त छाया गीत सुठो ईंदो हो ऐं मां शुरू खां वठी विविध भारतीअ जो ई आशिक रहियो आहियां ऐं समाचार जेके पहिरीं ईंदा हुआ उहे समाचार ॿुधंदा हुआसीं ऐं पोइ धीरे धीरे कलाक कलाक में जेके ॿ मिंट समाचार ॾींदा हुआ उहो ॾाढो सुठो हूंदो हर कलाक में ॿी मिंटे जा जेके समाचार ईंदा हुआ त उन में सॼे देश दुनिया जी ख़बरचार पवंदी हुई त उन मां भई असां किथे वेठा आहियूं कीअं आहे छा पियो वहे वापरे उनजी ख़बर

0: पवंदी हुई, हाणे उन में थोरो फेरो अची वियो आहे, पर जेकर उहे ॿी ॿी मिंटे वारा जेकर समाचार हाणे बि कलाक कलाक में अचनि त ॾाढो सुठो। मनचाहे गीत ईंदो हो उहो ॿुधंदा हुआसीं, हवा महल, छाया गीत ऐं एक ई फिल्म से कंहिं टाइम में हलंदी हुई, मां उहो बि ॾाढो ॿुधंदो हुउसि। ऐं ख़ासि करे आकाशवाणी जयपुर ते पहिरीं नंढे हूंदे मुकुल कार्यक्रम ईंदो हो, मां उहो बि ॿुधंदो हुउसि, ऐं ॿारनि जो किलकारी ऐं मुकुल ईंदो हो। तंहिंखां पोइ मां सिंधी कार्यक्रम ॿुधण बि शुरू कया, मां ॿुधंदो हुउसि। उन लाइ मूंखे असांजी भेण जेका कमला केसवाणी हुई उहा सतगुरु महाराजनि जे संपर्क में उन्हनि जी शिष्यनी हुई, त हिते चेट जे मेलनि में ईंदी हुई ऐं ॿियो असां बि उन्हनि वटि वेंदा कंदा हुआसीं। पोइ 1977 में जॾहिं सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराजन ब्रह्मलीन थिया त मूंखे चङी तरह सां यादि आहे सिंधीअ में चार रिकॉर्ड तॾहिं कारियूं प्लेटूं हलंदियूं हुयूं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड चैन रिकॉर्डनि जो हिकिड़ी प्लेट हलंदी हुई ऐं जंहिंमें वरी 8, 10, या 12 हूंदा त उनखे LP रिकॉर्ड करे चयो वेंदो हो। त मूंखे सतगुरनि जूं ॻाल्हियूं यादि पवनि ऐं जादू हणी विया जीअ में जोगी ऐं मूंखे ॾियो को ॾसुड़ी जेॾियूं सतगुरु स्वामी सर्वानंद जो ऐं ॿियो इहो खणी वञ नियापो कबूतर उॾामी जिते आहे सतगुरु सर्वानंद स्वामी, इहे चार भॼन उन्हनि रिकॉर्ड कराया। त सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराजनि जी आज्ञा सां आकाशवाणी सिंधी प्रोग्राम में तॾहिं 9 बजे राति जो हलंदो हो, उन टाइम में उहो असां आकाशवाणीअ जो चेट जे मेले में उहो प्रोग्राम रखाए करे उहे भॼन सतगुरु महाराजनि जे यादगिरीअ जा अमरापुर दरबार ते आकाशवाणी जयपुर मां सिंधी प्रोग्राम डायरेक्ट लाइव हलाए करे सत्संग में हलाया चेट जे मेले में।
1: इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि साईं जन, असांखे बि ख़बर न हुई कि तॾहिं तव्हां आकाशवाणी तां इहो प्रोग्राम लाइव हलारायो हो।
0: हा, इहा मूंखे चङी तरह सां यादगिरी आहे। हाणे त भेण वेचारी कमला केसवाणी गुज़ारे वई त मुंहिंजो सुठनि सुठनि कलाकारनि सां वाकुफ़ियत रही आहे।
1: असां चाहींदासीं साईं असांखे तव्हां उहे सभु कलाकार ॿुधायो जिन सां तव्हांजी वाकफियत बि रही ऐं उन्हनि आकाशवाणी ज़रिए पंहिंजी आवाज़ बि ॾिनी आहे।
0: 1971 में जॾहिं भारत पाकिस्तान जी लड़ाई लॻी त हिकिड़ो गीगले का बापू प्रोग्राम ईंदो हो, गणपत लाल डांगी करे चवंदा हुआ, पुराणो कलाकार ॾाढो, गीगले की माँ गीगले का बापू, इहो उते ॾाढो सुठो 2:20 ते समाचार पूरा थींदा हुआ। उन खां पोइ इहो 10 मिंटे की 15 मिंटे जो प्रोग्राम ईंदो हो, उन में हिकिड़े प्रोग्राम में इहो उन गणपत लाल ॻायो त बीबी मैया खान की पुकारे मुझे इंदिरा बिना कौन उबारे। जॾहिं भारत मैच भारत जंग खटी उन खां पोइ इहो गीगले का बापू गणपत लाल डांगीअ चयो हुयो।
1: अच्छा, असांजे सिंधी कलाकारनि जे बारे में बि साईं तव्हां असांखे ॿुधायो जेके तव्हां आकाशवाणी तां ॿुधा हुजनि ऐं कहिड़ा कहिड़ा प्रोग्राम तव्हांखे सिंधी प्रोग्राम सुठा लॻंदा आहिनि ॿुधण में।
0: हेकर दादा हुंदराज दुखायल जे आवाज़ में वण कुहाड़े जी कथा बि मूं तव्हांजे सिंधी प्रोग्राम में ॿुधी आहे ऐं तंहिंखां सवाइ सोरठ जी कहाणी बि दादा हुंदराज दुखायल जे आवाज़ में ॿुधी हुअ। मां गुलनि जी गुलकारी ऐं ॿिया चया सभिनी जो मां शाइक़ु रहियो आहियां ऐं भाउ वीरभान दास सां गॾु बि मां हुते रेडियो स्टेशन ते सिंधी प्रोग्राम जी रिकॉर्डिंग में पिणु वञी चुको आहियां ऐं उते तॾहिं पवार साहब हूंदो हो रिकॉर्डिंग इंजीनियर जेके हूंदा हा चीफ, उहे कंदा हुआ रिकॉर्डिंग ऐं हिकिड़ी तॾहिं ग्रामीण जगत हूंदो ग्राम जगत या अहिड़े नमूने सां उतां जी मैडम हूंदी प्रमिला भेण उहा हूंदी हुई ऐं ॿियो गोपाल डांगी उहे बि हूंदा हुआ। मां उन्हनि वक़्तु

0: युवाणीअ जो प्रोग्राम बि करण वेंदो हुउसि ऐं हेकर युवाणीअ में मूं तबले जो प्रोग्राम बि ॾिनो हो हुते झपताल पेश कयो हो
1: अच्छा तव्हां वटि साईं ॾाढियूं घणियूं यादूं आहिनि ॿियो बि ॾाढो दिलि पई थिए की असां तव्हां खां ॿियूं बि ॻाल्हियूं पुछूं जेके तव्हां सिंधी प्रोग्रामनि जे बारे में असांखे ॿुधाइणु चाहियो असांजा ॿुधंदड़ अॼु ॿुधी रहिया आहिनि असांखे
0: मां अॼु बि जेके बि प्रोग्राम सिंधी में ईंदा आहिनि कोशिशि करे मां ॾाढो ॿुधंदो आहियां
1: जी
0: ऐं न सिर्फ़ ॿुधंदो आहियां पर उन ते पंहिंजी टीका टिपणी बि मोकिलींदो आहियां जेके प्रोग्राम मूंखे वणंदा आहिनि उन्हनि जो मां थोरायतो मञी थींदो आहियां ऐं जेके मूंखे उन में के उणायूं नज़र ईंदियूं आहिनि घटितायूं नज़र ईंदियूं आहिनि मां उहे बि लिखी मोकिलींदो आहियां या फोन ज़रिए उन्हनि खे बानीकारनि खे ॿुधाईंदो रहंदो आहियां दादा आडवाणी साहिबु भेण राजकुमारी करनाणी ऐं भेण पूजा चांदवाणी ऐं तव्हां आहियो या वंदिता आहुजा आहे भेण मां इन्हनि सभिनी सां फोन ज़रिए मिलंदो रहियो आहियां मास्टर चंद्र जा रिकॉर्ड मां ॾाढा ॿुधा ऐं जॾहिं मां कोटा में हूंदो हुउसि त हिकिड़ी कैसेट सिंधीअ में रिलीज़ थी हुई
1: जी
0: मोहम्मद रफ़ी साहिब जी
1: अच्छा
0: सिंधी भॼननि जी
1: हा
0: ॿुधो आशिकनि जा इंसाफ़ ॾींहनि सिर घोरे घोरे उहे सत अठ कलाम हुआ उहे बि मां केतिरा दफ़ा फरमाइशूं करे चुको आहियां ऐं मुंहिंजी दिली इच्छा हूंदी आहे त जेके गैर सिंधी कलाकार सिंधी भॼन या गीत ॻाए चुका आहिनि जेकर वक़्त ब वक़्त उहे बि हुननि में अचनि त ॾाढो सुठो ऐं हींअर वेझिराईअ में दादा कन्यालाल मेठवाणीअ जो भेंट वार्ता आई हुई छा पातो छा विरायो छा विञायो उहा बि मां ॿुधी ॾाढी मूंखे ॾाढी वणी भेण माया ईसराणीअ जा बि मां प्रोग्राम ॿुधा आहिनि कौशल्या कृपलाणीअ जो बि गुज़िरियल हफ़्ते प्रोग्राम आयो हो मां उहो बि ॿुधो हो मां ॿुधंदो रहंदो आहियां
1: साईं असांखे इहो बि ॿुधायो की असांजे प्रोग्रामनि में घणेई भेरा असां नाटक झलकियूं इहे सभु बि हलाईंदा आहियूं भॻतूं बि हलाईंदा आहियूं त तव्हां उहे बि ज़रूरु ॿुधंदा हूंदा उन्हनि जे बारे में बि असांखे ॿुधायो
0: भॻत कृष्ण जी भॻत हासे जी ऐं हींअर विच में हिकिड़ी भॻत घनश्याम जी आवाज़ में इहो जेको रांझन रांझन हीर जेका ॿेड़ीअ वारी आहे उहो हुन जी भॻत हुई मां उहा ॿुधी ऐं भॻत कृष्ण जे आवाज़ में इहो सांगी मिलंदमि शाल नेणे मां नेत नित थी निहारियां इहो मां ॿुधंदो रहियो आहियां मूंखे ॾाढी वणंदा आहिनि ऐं हासे भॻत जे आवाज़ में बि भॻत ॿुधी आहे
1: जीअं साईं चवंदा आहिनि की परिवर्तन ई संसार जो नियम आहे त पहिरीं में ऐं अॼु में आकाशवाणी जे कार्यक्रमनि में ॿुधण में कहिड़ा बदलाव तव्हां महसूसु कया आहिनि ऐं उहे कहिड़ियूं उन्हनि में असांखे तब्दीलियूं अञा बि करणु खपनि उन जे बारे में बि ॿुधायो असांखे
0: हिकिड़ी तब्दीली इहा हुजणु घुरिजे त सिंधीअ में जीअं हिकिड़ो हर हफ़्ते या महीने में हिकु दफ़ो जेके सिंधी समाज जूं शख़्सियतूं अहिड़ियूं जेके थियूं आहिनि या उन्हनि जो अहिड़ा के कार्यक्रम थिया आहिनि या कुझु अहिड़ी का ॻाल्हि थी आहे त उन जी जीअं सिंधी न्यूज़ अॻे सुबुह जो 8:40 ते सिंधी समाचार ईंदा हुआ ऐं शाम जो 6:15 मोहिनी भाटिया क्विकू भला हीरो ठकुर परमानंद केवल रामाणी सुंदरा गुनाणी इहे सभु समाचार वाचक हूंदा उहे ॿुधण लाइ मिलंदा हाणे उहो सिंधी समाचार मूंखे ॿुधण लाइ कोन था मिलनि मां पाण चाहियां थो त जेकर उहे उन्हनि जो को टाइम वग़ैरह हुजे त मां उहो बि ॿुधी सघां जेकर गैर सिंधी कलाकार आहिनि या जेके बि सिंधी कलाकार थी रहिया आहिनि जिन जा कलाम वग़ैरह आया आहिनि त उन्हनि जा जेके जनम जा ॾींहं हुजनि वर्सियूं हुजनि उन ॾींहं ते ख़ासि करे उन जो ज़िक्र थिए या उन जो को कलाम या का कुझु अहिड़ो कुझु उन जे यादगिरीअ में अचे त ॾाढो सुठो तव्हां हिकिड़ी शुरू कयो हो प्रोग्राम संतन महापुरुषनि जी वाणी
1: जी जी जी
0: हाणे लॻे थो शायदि उहो प्रोग्राम अॼुकल्ह कोन थो अचे पहिरीं महीने में हिकिड़ो दफ़ो उहो बि ईंदो हो
1: बिल्कुलु साईं असां ध्यानु ॾींदासीं तव्हांजी ॾिनल जेके बि सुझाव आहिनि उन्हनि ते गौर कयो वेंदो साईं हाणे असांखे इहो बि ॿुधायो की अॼु असांजे हिन प्रोग्राम में तव्हांजी पसंदि जो कहिड़ो गीत कलाम ॿुधणु पसंदि कंदा

0: अॼु असांजे प्रोग्राम में जेकर भाउ वीरभान जे आवाज़ में कोई सुहिणो गीत मिली सघे त वॾी महिरबानी थींदी
1: ज़रूरु साईं असां तव्हांजी पसंदि जो ई गीत हलाईंदासीं ऐं हलंदे हलंदे असांजे ॿुधंदड़नि खे तव्हां छा संदेश ॾियणु चाहींदा
0: सभ खां पहिरीं त असां पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे न विसारियूं जे असां सिंधी ॿोलीअ खे ज़िंदा रखंदासीं त असां बि ज़िंदा रहंदासीं जे सिंधी ॿोली ई न रही त पोइ असांखे केरु सुञाणंदो असांजा साईं शांति प्रकाश महाराजनि बि चवंदा हुआ भई ॿोली अरबियो त छॾियो कांग आहिनि कुता ॿिला आहिनि उहे जानवर ऐं पखी बि पंहिंजे हर को पंहिंजी पंहिंजी ॿोलीअ में ॻाल्हाए थो पर असां अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त असां सिंधी थी पाण में सिंधी न ॻाल्हायूं केॾे न अजब जी ॻाल्हि आहे केॾे न अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे इहा ई ॻाल्हि असांजा चौथी पातशाही सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराजनि बि चवंदा हुआ भई दुनिया में सत अजूबा मशहूरु आहिनि पर मां तव्हांखे अठो अजूबो ॾेखारियां थो स्पेन में हिकिड़े शहर में सतगुरु महाराजनि सत्संग कंदे चयो त साईं खां पुछियो वियो साईं उहो अठो अजूबो कहिड़ो आहे चई अठो अजूबो इहो आहे त तव्हां सभु सिंधी आहियो पर सिंधी थी करे बि पाण में सिंधी नथा ॻाल्हायो इन खां वॾो ॿियो अजब कहिड़ो थींदो आहे
1: तव्हां को प्रेरणादायक ॿ लाइनूं ॿुधाइण चाहियो
0: या निज आत्म ज्ञान हो या हो पर उपकार टेऊं जिस में ये नहीं मानुष सो बेकार ही महीनो परशोत्तम महीनो हली रहियो आहे इन मञा असांखे सिखणु खपे त असां परोपकार जेतिरो करे सघूं बांदर में ऐं माण्हूअ में इहो ई अंतर आहे अॻियां बांदर पंहिंजे अॻियनि ॿिनि पेरनि जो हथनि जे रूप में इस्तेमालु करे सघंदो आहे पर उहे हथनि जो इस्तेमालु कीअं कंदो आहे उहो ॿियनि खां फुरण लाइ कंदो आहे पीअण लाइ कोन कंदो आहे पर असां माण्हू आहियूं त असां ॿिए खां फुरियूं न पर ॿिए खे ॾियूं ॿिए खे ॾेई करे असां ख़ुशि थींदासीं त असांजो जीवन सफल थी वेंदो
1: तमामु सुठो तव्हां साईं जन असांखे संदेश ॾिनो आहे तव्हां फोन ज़रिए असां सां जुड़ी रहिया ऐं तमामु सुठी जानकारी असांखे तव्हां आकाशवाणी जे सफ़र जे बारे में बि ॿुधाई ऐं ॿी बि ॿुधाई तव्हां असां सां फोन ज़रिए जुड़िया तव्हांजो घणो घणो धन्यवाद साथियो हींअर अवां फोन ज़रिए हीअ ॻाल्हि ॿोल ॿुधी रहिया हुआ ऐं अचो त हाणे ॿुधूं साईं जिन जी पसंदि जो वीरबान हीरानंदाणीअ जे आवाज़ में ॻातल ही गीत

यादि रहिजी वेंदी मुंहिंजी तकदीर सां कंहिंजो त करम जुड़ंदो कया आहिनि सवे रिश्तनि जा फ़ैसिला छा इन सां पंहिंजनि ते फ़र्क़ु पवंदो मुश्किल आहे पंहिंजे मन खे समुझाइण हौसलो धारे आख़िर त कदम खणबो ऐं साथियूं इन सां गॾु ई अॼु जो असांजो सिंधी कार्यक्रम हिते ई पूरो थो थिए वरी खणी हाज़िर थींदासीं ईंदड़ मंगल ॾींहुं हिकिड़ो ॿियो नओं सिंधी प्रोग्राम खणी ईअं ई ॾींहं जो 12:10 ते तेसीं ताईं प्रिया नंदवानी खे ॾींदा मोकल नमस्कार।

साथियों अवां वीर भान हीरा नंदाणी जे आवाज में गीत बुधी रहा हुआ साथियों इन गीत के बुधन का पोए मां भी यह कविता तमा के बुधाएं चाहिंदस जेका मां किथे पड़ी हुई दिल जी हरकत ते कहजो त बसर थींदो मुंजे गमन जो कहते त असर थींदो बेन जे वास्ते त घणई कुछ कयो मु मुंजे सुडगन ते कहखे त रहम ईंदो वक्त गुजरी वे

215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। शैलेंद्र सिंह के स्वर में फिल्म का नाम है एग्रीमेंट।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है मंजिल मंजिल।

गीतों का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आशा भोसले और मनहर का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है होटल।

0: ये था फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के धोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन दाम पर
2: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं के इस मौसम में अपना ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए सरकारी विभागों ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसे नहीं भूलें।
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आम की विभिन्न किस्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गर्मियों के आते ही आम हर घर में चर्चा का विषय होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के परंपरागत पेय पदार्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना झलकती है। राजस्थान में छाछ हर खाने की साथी होती है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में देश की उपलब्धि से की। उन्होंने 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूरकी से भी बातचीत की। अपनी हाल ही की नीदरलैंड यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां आयोजित एक समारोह में चोला काल की

0: ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। केरलम में चलने वाले स्विमिंग क्लब के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमें बड़ी सीख देता है कि सेवा करने के लिए अच्छा इरादा और लगातार प्रयास जरूरी है।
1: साजी बलासेली जी का जीवन हमें बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर युवाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इसके बाद उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान कल से शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक महीने के इस राष्ट्रीय अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जन जागरूकता से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि ये अभियान उर्वरकों के प्रयोग और मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी और गांवों को सीधे योजनाओं का लाभ दिए जाने पर केंद्रित होगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई है। उदयपुर जिले में दो स्थानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर 18,000 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला ने बताया कि ये मिलावटी घी टैंकों और विभिन्न कंटेनरों में पाया गया। कार्रवाई के दौरान फूड कलर की बोतलें भी बरामद की गई। टीम ने सवीना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से मिलावटी घी और अन्य दुग्ध उत्पादों का करीब 42,000 किलो से अधिक का स्टॉक भी पकड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज, वहीं 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट बताया है। मौसम का ये बदलाव 3 जून तक बना रह सकता है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अलवर सहित कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज आंधी चली। इससे दिन में ही रात सा अंधेरा छा गया। कई जगह आसमान धूल के गुबार से ढक गया, जिसे कुछ मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में भी कल शाम आंधी चली, वहीं जोबनेर इलाके में झमाझम बरसात के साथ ओले गिरे। आंधी बारिश से तापमान में 9 से 12 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 1:05:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का कार्यक्रम लेकर आई हैं श्रीमती माधुरी शर्मा और श्रीमती माधवी व्यास।

0: कार्यक्रम में सभी बहनों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं माधुरी शर्मा और मेरे साथ हैं
1: माधवी व्यास। तो आप सभी बहनों को नमस्कार।
0: कहिए बहनों, आप सब कैसी हैं? है ना,
1: बहुत ही अच्छी होंगी हमारी बहनें, उम्मीद है।
0: गर्मी से इन दिनों बहुत मुश्किल से छुटकारा मिला है और अभी जो मौसम है बहुत ही सुहावना हो रहा है यहाँ पे अपने बीकानेर शहर का, है ना। लेकिन ऐसी गर्मी में जब आप परेशान हो जाते हो, जीवन की भाग दौड़ की राह में चलते जाते हो, तो थोड़ा हार कर आसपास की दुनिया को महसूस भी करते हो कैसा चल रहा है मौसम।
1: हाँ, तब समझ आता है कि बदलाव केवल बड़े मंचों पर नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे जागरूक कदमों से।

0: करके आता है। कभी कोई महिलाएं अपने सपनों को नया आसमान नहीं देती है तो कभी कोई परिवार से दूर रहकर भी खुशियों को बचा लेती है, और कभी समाज की एक छोटी सी चेतना भी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बदल देती है।
1: आज का हमारा कार्यक्रम भी कुछ ऐसा ही है, संवेदनशील और प्रेरणादायक विषय को लेकर आपके बीच आया है, जहां बात होगी स्वस्थ जीवन की, नारी सम्मान की, सुरक्षा की और उन संकल्पों की जो समाज को भीतर से मजबूत बनाते हैं।
0: आज हम कोशिश करेंगे कि बातें केवल शब्द बनकर न रह जाएं, बल्कि दिलों तक उतरे और सोच में एक नई रोशनी जगाएं। तो आइए नई उम्मीद, नई चेतना और नई विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं आज के खूबसूरत कार्यक्रम की, जहां हर चर्चा में होगा अपनापन, हर संदेश में होगा संवेदना और हर पल देगा जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने का एहसास।
1: और इसी सुरीली शुरुआत और मधुर को और भी अधिक मधुर बनाने के लिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत
0: जो दिलों को छू जाए और मन में नई ऊर्जा भर दे।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत मतगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: मतगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: सखियों, तंबाकू एक ऐसा धीमा जहर है जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि परिवार की खुशियों को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। कुछ पल की आदत जिंदगी भर की तकलीफ बन सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम खुद को तंबाकू से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करें, क्योंकि स्वस्थ जीवन से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती।
5: बिल्कुल नहीं होती। माधवी, तुमने बहुत अच्छी बात बताई है कि स्वस्थ जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता। हर साल इसका सेवन करने वाले लाखों लोग मौत का ग्रास बनते जा रहे हैं। ये दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि लोग इसके प्रति जागरूक बने और यह किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। 2026 का विषय तंबाकू के सेवन के तात्कालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साथ ही लोगों को इससे जोड़ने के लिए व्यवहारिक रणनीति से सशक्त बनने पर केंद्रित है। ये दोहरा दृष्टिकोण इस बात को स्वीकार करता है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, लोगों को इस व्यसन से मुक्ति पाने के लिए एक ठोस सहायता की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू महामारी की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए 1987 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की और यह वार्षिक अभियान तंबाकू के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य के जोखिमों पर प्रकाश डालता है और इस और इसको सेवन को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों के की वकालत करता है। साथ ही प्रत्येक वर्ष तंबाकू नियंत्रण में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नया विषय निर्धारित किया जाता है, है ना
4: माया? बिल्कुल सही कहा आपने।
5: विश्व तंबाकू निषेध 2026 का विषय है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना और इसके प्रयोग से जो नुकसान होते हैं ना, उसमें सबसे प्रमुख है आंखें, गुर्दे, प्रजनन स्वास्थ्य का नुकसान। इसके साथ ही साथ हमारी महिलाओं में उच्च रक्तचाप, गर्भपात की समस्या, रजोनिवृत्ति की ओर बढ़ना तेजी से, इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता का घटना, इसके साथ ही संक्रमण का खतरा बढ़ जाना, ये बहुत सारे दुष्परिणाम है। धूम्रपान का जोखिम, धूम्रपान करने के साथ साथ उसके आसपास के लोगों का भी इसमें प्रभाव पड़ता है, है ना?
4: बिल्कुल सही कहा है माधुरी आपने। तो आइए एक छोटी सी कोशिश करें, तंबाकू को ना कहें और जिंदगी को खुलकर हाँ कहें। सांसों की कीमत पहचानिए, जीवन को धुएं में मत उड़ाइए। इन्हीं जागरूक भरे विचारों के साथ सुनते हैं एक बेहतर प्यारा सा गीत जो जीवन में प्यार करना और मुस्कुराना जीना सिखाए है।

0: अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सखियों, अभी गाने से पहले हमने बात की थी तंबाकू विश्व की के तंबाकू निषेध दिवस की बात की थी ना, जैसे कि हमने, तो हम उसी विषय पर अब कार्यक्रम को कंटिन्यू रखते हैं। तंबाकू केवल एक आदत नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है इसका, सशक्त माध्यम है इसका, यूं समझ लीजिए। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लेकर आए हैं एक विशेष भेंट वार्ता। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शरद रावत से बातचीत कर रहे हैं श्री महेश्वर नारायण शर्मा। आइए सुनते हैं ये ज्ञानवर्धक चर्चा।
3: श्रोताओं नमस्कार। 31 मई को संपूर्ण विश्व में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तंबाकू का मानव स्वास्थ्य पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, जो सामाजिक हानियां होती है, इन सब बातों पर बातचीत के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शरद रावत जी को। आप ENT स्पेशलिस्ट हैं और इस क्षेत्र में बीकानेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आकाशवाणी बीकानेर के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
4: नमस्कार महेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। 31 मई को हम लोग हर साल विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाते हैं, जो तंबाकू के हानिकारक प्रभावों पर जागरूकता फैलाने और तंबाकू के प्रति जनता को सचेत करने का एक महत्वपूर्ण दिन है।
3: बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि ये जन जागृति से जुड़ा एक दिवस है जिस पर तंबाकू के प्रति जागृति पैदा की जाती है। डॉक्टर साहब, हम शुरुआत इसके थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास के साथ करना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी बातें थी जिसने समाज में तंबाकू के प्रति जन जागृति के लिए प्रेरित किया और एक दिवस के रूप में इसको मनाने का निश्चय किया गया।
4: तंबाकू महेश्वर जी एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज में गहरा प्रभाव छोड़ती है
3: जी।
4: ये दिन जो हमने मनाने का निर्णय लिया पूरे विश्व में, ये इसीलिए लिया है ताकि तंबाकू उत्पादन और उसके उपयोग के खिलाफ जो विशेष अभियान है उनका भी एक हिस्सा बन सके
3: जी।
4: एक फोकस पॉइंट बन सके ये दिन कि पूरा विश्व एक साथ सम्मिलित होके इस व्यसन के खिलाफ लड़े।
3: मूलतः इसका जो सेवन है, उसका जो व्यसन जिसकी आदत पड़ जाती है, उसके विरुद्ध एक लड़ाई का एक जागृति के उद्देश्य के साथ इस दिवस की शुरुआत की गई थी।
4: हाँ जी
3: जी। डॉक्टर साहब, हम 2024 के वर्ष में जो थीम इस दिवस के लिए रखी गई है उस पर यदि बात करना चाहें तो क्या उसका अर्थ है, क्या थीम रखी गई है, और अगर हम बीकानेर के क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं तो इसका क्या महत्व बीकानेर के क्षेत्र के लिहाज से है?
4: 2024 के वर्ष में जो थीम रखी गई है इसकी, वो ये है कि युवाओं को इस व्यसन से बचाना। युवाओं में इसके बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं। तंबाकू के सेवन से युवाओं में आत्मविश्वास की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट, संज्ञानात्मक तनाव और बदलते रूपों के घातक बनने की संभावना है
3: जी।
4: और समाज में संगठित अपने स्थान की हानि भी होती है उनकी। युवाओं का जो आसपास उनकी कंपनी है, उनके मित्र हैं, उनके घर वाले हैं, उसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है उनकी मनोस्थिति पे। और क्या वो तंबाकू की तरफ ढकेले जाते हैं या उससे पीछे खींचे जाते हैं, ये आसपास के लोगों पर बहुत डिपेंड करता है।
3: युवाओं की बात डॉक्टर साहब आपने की, युवाओं में अक्सर ऐसा देखने में आता है कि इसके इस व्यसन की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं आसपास के वातावरण को, अपने साथ की कंपनी को, अपने साथ का जो मित्र जो संगत है उसी को देखकर ये लोग प्रेरित होते हैं। एक विशेषज्ञ के रूप में भी और एक बतौर युवा डॉक्टर के रूप में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि युवा कैसे इस लत से बचे, कैसे अपने आप को इस तंबाकू के व्यसन से दूर रख सकें?
4: इसमें सबसे पहले जो जरूरी है वो है जागरूकता तंबाकू के नुकसानों के खिलाफ। युवा को पता ही नहीं कि वो किस कुएं में गिरता जा रहा है। बहुत आसानी से उपलब्ध है आज की तारीख में हर रूप में तंबाकू, चाहे वो पान, सुपारी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, पुड़िया, सौ तरह के रूप अवेलेबल है हर युवा को उसमें ढकेले जाने में, इस गड्ढे में
3: जी।
4: सबसे जरूरी जो इसमें ये है कि घर वालों का खुद पे कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, वो खुद इन व्यसनों से बचे। उसके साथ साथ वो अपने बच्चों को ध्यान रखें कि उनकी कंपनी तो कहीं खराब नहीं हो रही है
3: जी।
4: युवा को ये देखने की जरूरत है कि हाँ, मैंने अगर तंबाकू का सेवन किया तो मुझे किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, इसकी उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि अगर हर आदमी को पहले दिन तंबाकू खाने से पहले ये पता हो कि उसके कितने हानिकारक प्रभाव है उसके पूरे जिंदगी पे, तो वो जरूर इसको वापस उठाएगा नहीं।
3: डॉक्टर साहब, युवाओं में जो आपने जो इसका तंबाकू का व्यसन है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, आपने बताया कि कितने नकारात्मक

0: प्रभाव इसके पड़ते हैं। आप सब एक चिकित्सकीय दृष्टि से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो तंबाकू सेवन है इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो कैसे हम इसकी चपेट में आते हैं, कैसे जब इसकी एक व्यसन बढ़ जाती है, इसकी आदत बढ़ जाती है, तो क्या क्या प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: तंबाकू का सेवन कई तरह की समस्याओं का कारण बनता है, जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, श्वसन संबंधी समस्याएं। तंबाकू का सेवन ना केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि ये आर्थिक और सामाजिक परिणामों का भी कारण बनता है।
0: जी।
1: एक खासकर अगर हम आज की युवाओं को ध्यान रख के बोले तो युवा जितनी जल्दी इस गड्ढे में गिर जाता है उतना ही ज्यादा उसके जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है।
0: जी।
1: कम उम्र में जो अवेलेबिलिटी है गुटके की, पान मसाला, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, इन सब की, बहुत जल्दी वो आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है। इन व्यसन को, ये ऐसे शौक पालने में कोई फ्री में होता नहीं है, वो धीरे धीरे वो घर से हो सकता है पैसे चुराए, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी खुशी से बच्चे को पैसे नहीं देगा। और इस वजह से ये दिक्कत आती है कि उनको इतनी समस्याओं का सामना बहुत कम उम्र से करने लग जाते हैं। युवा जो कि हम ये समझते हैं कि वो देश का बिल्डिंग ब्लॉक है, वो देश का बेसिक ढांचा है, और अगर वो ही इतनी खतरनाक बीमारियों की चपेट में आने लगे तो पूरे देश की हर तरीके से व्यवस्था चरमराने लगेगी आने वाले कुछ समय में।
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि तंबाकू के सेवन का केवल स्वास्थ्य पर ही दुष्प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक जो परिणाम है इसके वो भी देखने में आते हैं। जैसे जैसे इसका व्यसन बढ़ता है, इसकी आदत बढ़ती है, तो इसका प्रभाव संपूर्ण परिवार पर दिखाई देने लगता है। डॉक्टर साहब, हमने तंबाकू के सेवन की जो बात कर रहे हैं, आपने इसके बहुत सारे मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनकी जानकारी बताई। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति, कोई मरीज अगर आपके पास आता है जो तंबाकू का एडिक्ट है, किसी भी रूप में उसका सेवन करता है, तो उसको उस जो आदत है उससे छुड़ाने के लिए आप किस तरह की बातें बताते हैं उस मरीज को और उसके परिवार को कि कैसे इसकी चपेट से वो निकल पाए।
1: जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है जिसको तंबाकू का व्यसन है किसी भी रूप में, चाहे वो लेता हो या अब उसको बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है तंबाकू से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो हम उसको बिठा के अच्छे से बहुत देर तक बहुत ही फ्रेंडली रूप से समझाते हैं कि इसके कितने ज्यादा दुष्प्रभाव हैं। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि जो कि बहुत ही छोटी हो, बहुत जल्दी ठीक होने वाली हो। तो सबसे पहले उनको समझाया जाता है कि इसके खतरनाक प्रभाव के बारे में।
0: जी।
1: फिर उनको समझाया जाता है कि इसका आर्थिक प्रभाव कितना खतरनाक होगा पूरे परिवार पे जो इसका इलाज होता है उसका। परिवार वालों को साथ में जरूर बिठाया जाता है ताकि वो भी समझे और वो अपने रिश्तेदार को पूरी तरीके से सपोर्ट करें, पूरी तरीके से सहायता करें इस व्यसन से दूर भागने में। परिवार वालों का साथ, दोस्तों का साथ, ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर हमें किसी भी व्यसन से दूर होना है। हम तंबाकू तो बहुत आगे की बात हो गई, आज अगर हमें कोई अपनी फेवरेट सब्जी छोड़ने को बोल दे तो भी हमारा मन उच्च में मचल जाता है कि अरे ऐसे कैसे हम छोड़ दें। तो ऐसे में तंबाकू के लिए तो सबका सपोर्ट और साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमारा पहला फोकस ये रहता है कि पेशेंट और उसके रिश्तेदारों दोनों को जागरूकता दी जाए इसके हर तरीके के दुष्प्रभाव की, ताकि वो जल्द से जल्द इससे बच सके। कुछ दवाइयां हैं, कुछ तकनीकें हैं जिनको हम लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं अगर किसी को बहुत ही ज्यादा इसकी आदत है, लत है। पर उससे पहले हम लोग पेशेंट को समझाते हैं कि अपनी मनोस्थिति को मजबूत करें, क्योंकि उसके बिना कोई भी दवाई, कोई भी तकनीक काम की नहीं है।
0: जी।
1: सबसे पहले आपको ये निश्चय करना है कि हाँ, मुझे आज से मौत से दूर जाना है, इस व्यसन से दूर जाना है। उस दिन के बाद से हर चीज आसान है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है कि जो तंबाकू के उत्पाद हैं उस पर ऐसी वैधानिक चेतावनियां भी लिखी रहती हैं, कई बार ऐसे डायग्राम्स भी रहते हैं, कुछ ऐसी लिखित या मौखिक बातें जो हैं जो अक्सर सुनाई देती हैं ताकि इसके प्रयोग के सेवन से हम लोगों को बचा सकें। लेकिन फिर भी ऐसा देखने में आता है कि इसके जो जद में आ चुका है, जो इसकी चपेट में है व्यक्ति, वो इसको कहीं ना कहीं छोड़ने में बहुत ही असहज महसूस करता है। आपने बहुत सी बातें बताई कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर वो मेडिसिन लेने के में सक्षम नहीं है तो उसके परिवार को क्या करना चाहिए कि किस तरह से उन मेडिसिन को उस मरीज को वो दे, कैसे जो प्रोटोकॉल इसका एक डिसाइडेड है उसको फॉलो करवाने के लिए उस परिवार को आप क्या काउंसलिंग के रूप में सलाह देते हैं?
1: परिवार वालों को हम एक ही सलाह देते हैं, इसमें जो सबसे जरूरी है वो ये है कि पूरा पूरा मनोबल बढ़ाए पेशेंट का।
0: जी।
1: वो एक बीमारी से ग्रस्त है, उसको ये मत समझिए कि अरे हमारे बेटे को या हमारे पिता को बस कोई बात नहीं, तंबाकू ही तो खाते हैं, खा लेंगे, उसके अलावा इतना काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं उनको बोलना है।
0: जी।
1: ऐसा इसको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। हमें उनको, पेशेंट को भी ये समझाना है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं आप, और हम आपके साथ हैं इसको छुड़ाने में।

0: जब भी हम तंबाकू को छोड़ने की कोशिश शुरू करते हैं, हमारा शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। हमें चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, थकान सी महसूस होने लगती है, और इन सब को अगर घर वाले एक बीमारी मान के सहयोग ना दें तो ये चीजें बढ़ती ही हैं। और फिर आदमी हो सकता है घर वालों के सामने ये सब का उपयोग ना करे, बट वो छुपके करने लगेगा
1: जी।
0: तो घर वालों को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि हाँ, हमारा जो रिश्तेदार है ये एक बीमारी से ग्रस्त है, और ये बहुत बड़ी बन सकती है अगर हमने इसका साथ नहीं दिया। जहां तक दवाइयों की बात है, दवाइयां बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, बहुत ही कम दाम

0: दीवार भी मजबूत कर ले तो तंबाकू के दुर्व्यसन से वो बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई पर तंबाकू का जो मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसी संदर्भ में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तंबाकू के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये बहुत लंबी चलने वाली लड़ाई है और बहुत ही गहन लड़ाई है। तंबाकू के खिलाफ इस लड़ाई में हमें सामाजिक समर्थन, शिक्षा और नीतियों की जरूरत है
0: जी।
1: विद्यालयों और कॉलेजों में तंबाकू के प्रति जागरूकता अभियान, सामुदायिक स्तर पर तंबाकू निषेध समारोह, तंबाकू के उपयोग को निषेधित करने के लिए कठोर कानून और सबसे महत्वपूर्ण रूप से युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के उपाय हमें ढूंढने हैं। इस दिवस पे हमें हर साल ये याद करना है कि हमारे समाज में इसकी जागरूकता की जो कमी है और जो सचेतता का महत्व है उसको ध्यान करना है
0: जी।
1: हमें इससे मुक्ति के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें ये नहीं देखना कि अरे हमारे घर में तो कोई नहीं करता, कोई बात नहीं, दूसरे जो करना है करे। आपका बच्चा, आपके घर में जो भी है, वो हमेशा किसी और को देख के ही शुरू कर रहा है। किसी के अपने आप मन में नहीं आता कि आज मैं कोई भी तरीके का नशा आज शुरू कर दूं, वो हमेशा किसी और को देख के कर रहा है। इसीलिए एज ए सोसाइटी हमें जरूरत है इसके अगेंस्ट लड़ने की। बहुत सारे दूसरे देशों में एज फिक्स कर दी गई है कि जिसके बाद तंबाकू बेचना ही बंद कर दिया है, तो ये बहुत जरूरी है कि कठोर नियम लाए जाएं। और नियम लाने से पहले है कि हमें ये निश्चय करना है कि आगे से इस चीज से दूर रहेंगे। तंबाकू एक ऐसी चीज है जिसका हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पे किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है
0: जी।
1: तो इसको हमें पहचानते हुए हमें और हमें अपने अपने परिवार को इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रखना है और जागरूकता के साथ दूर रखना है। सिर्फ मना नहीं कर देना अपने बच्चे को कि नहीं बेटा तुम आगे से गुटखा मत खाना या तुम कभी सुपारी मत खाना, उनको इसके साइड इफेक्ट्स, इसकी बीमारियां बता के, समझा के और समझाना कि हमें हाँ इससे दूर रहना है।
0: तंबाकू के सेवन से होने वाले शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों से न केवल हमें स्वयं को बचना है, अपने परिवार को और समाज को भी संकल्पित प्रयासों से बचाना है। डॉक्टर साहब, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जो महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ साझा की, हमारे श्रोताओं को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो भी जाते हैं, चाहे तंबाकू के व्यसन या तंबाकू की वजह से होने वाली बीमारियां, तो भी डरना नहीं है। इलाज के लिए आपको हमेशा आगे आना है। बहुत सारे हर तरीके से आपको सहायता करने के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। आपको संकोच किए बिना हमारे पास आना है और अपनी समस्या हमसे साझा करनी है। थैंक यू
2: बहनों, अभी आपने ये विशेष भेंट वार्ता सुनी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर, और भेंट कर रहे थे महेश नारायण शर्मा और चिकित्सक डॉक्टर शरद रावत जी से विशेष बातचीत हो रही थी जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है। अब हम आपको संगीत की दुनिया में फिर से लिए चलते हैं।
3: वो कहते हैं ना, स्वस्थ तन में ही बसते हैं सपनों के उजले रंग। आइए स्वास्थ्य का साथ निभाएं और जीवन भर में नई उमंगें भरें, कुछ इस गाने की तरह।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: आपसे धूम्रपान के बारे में काफी चर्चा की है, धूम्रपान निषेध के बारे में हमने आपसे खूब चर्चा करी। इसके सेवन से, जैसे कि तंबाकू के सेवन से जहां कैंसर तक होने की संभावना बढ़ जाती है, आज हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैंसर से कैसे बचाव किया जाए, कैंसर से के विरुद्ध महिलाएं किस तरह से लड़े।
1: कैंसर एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मन डर जाता है, लेकिन आज की महिला डरती नहीं है बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल का सामना करना जानती है।
0: जी हाँ, जब जागरूकता हो, समय पर जांच हो और सही उपचार से इस बीमारी की लड़ाई संभव है। सबसे जरूरी है महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, जागरूक रहे, है ना।
1: अक्सर महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य की बात आते ही चुप हो जाती हैं।
0: हाँ।
1: अब समय है कि वे अपनी सेहत को भी उतनी ही अहमियत दें। एक छोटी सी सावधानी, नियमित जांच और सकारात्मक सोच कई बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।
0: बचा जा सकता है अगर थोड़ी सी जागरूकता रखी जाए। यदि याद रखिए, हौसला सबसे बड़ी ताकत होता है। जब परिवार का साथ हो और मन में उम्मीद हो तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, और ये अवसर महिलाओं के साहस और जीवन की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो अपने जज्बे को सलाम करें और अपने आप को पहचाने कि आप क्या नहीं कर सकती। अपनी छोटी सी बीमारी के साथ भी आप लड़ सकती है और किस तरह से लड़ना है इसके लिए भी तैयार रहिए।
1: नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं है बल्कि साहस और संघर्ष की मिसाल भी है। ब्रेस्ट कैंसर जैसी चुनौती का सामना जागरूकता, समय पर जांच और आत्मविश्वास से किया जा सकता है।
0: आइए
1: हर महिला अपने स्वास्थ्य का प्राथमिकता दें और जीवन की इसी लड़ाई

एक में विजेता बनती रहें। और इसी के साथ प्रेरणादायक विचारों के साथ आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जो जीवन में उम्मीद, हौसला और मुस्कान के रंग भर दे। स्वास्थ्य नारी, सशक्त नारी, यही उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत तैयारी है ना। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: विक्रम को आगे बढ़ाता है और वक्त हो चुका है सरकारी योजनाओं की जानकारी का।
1: हाँ।
0: सरकार की विभिन्न योजनाएं आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई उम्मीद दे रही हैं। प्रधानमंत्री 15 सूत्री योजनाएं भी ऐसी ही एक प्रयास है। हाँ। जो महिलाओं को आगे बढ़ाने शिक्षा देने और अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा देता है। जब नारी सशक्त होगी तभी तो परिवार समाज और भी ज्यादा मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: सरकारी योजना तभी सफल बन सकती है जब उनकी रोशनी हर घर तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री 15 सूत्री योजना महिला के सपनों को नई उड़ान देगा और आत्मविश्वास जगाने की एक सुंदर पहल भी है। तो बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और ऐसे अवसरों की जो उनके जीवन में बदलाव ला सके। इन्हीं प्रेरणादायक बातों के साथ अब समय हो चला है एक खूबसूरत

0: खूबसूरत गीत का, तो आइए सुनते हैं और मन को सुकून देते हैं प्यारे से गीत के साथ।
1: गीत तो सुना रहे हो माधवी, लेकिन मौसम का जो रुख है वो देखिए किस तरह से जो कालीमा लिए बादल घूम रहे हैं और हमारी उम्मीदों को जगा रहे हैं कि शायद एक बूंद या दो बूंद धरती को मिलेगी जरूर, है ना, और धरती का जो गाल है उसको चुनेगी जरूर। तो सुनते हैं ये गीत।

0: झूमने जब सावन देखता है तो मौसम हो जाता है कहीं दूर हरी भरी वादियों में घूमने चले। जी हाँ, जब घूमने की बात आती है तो सफर की थाली तैयार करने की हमारी कुछ कोशिश होती है।
1: तो भाई, जब सफर की थाली की बात हो ही चुकी है तो चलिए सफर की थाली की शुरुआत कर ही दीजिए। और कैसे बनाते हैं सफर की थाली, ये भी जरा बताई दीजिए।
0: जहाँ सफर की थाली में कुछ सूखी सब्जियां काम आती है, जैसे सांगरी की हरी मिर्ची और सूखे आलू, जिसे सफर के आलू कहा जाते हैं, सुना है ना आपने? और उसी तरह से एक लेसे की सब्जी होती है जो आमतौर पे इन्हीं दोनों बाजार में मिलती है, बहुत कम समय के लिए आती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर उपाय होती है, हड्डियों के लिए बहुत ही काम की होती है। तो कुछ नहीं करना, आपको बाजार से थोड़ा रेसवा लेके आना है, उसे गर्म पानी में डाल दीजिए, हल्का उबलने के बाद उसकी टोपी अलग कीजिए और उसके अंदर से गुठली अलग कीजिए, और फिर मेथी, भीगी हुई मेथी और कैरी के साथ कद्दूकस करके, कद्दूकस करी हुई कैरी के साथ छौंका लगा दीजिए हींग जीरे का, और फिर देखिए सब्जी के अंदर डालिए लेसवे को और तुरंत शानदार सब्जी बन जाएगी आपके टिफिन के लिए। इसके साथ ही आप कुछ पूड़ी की रेसिपी बता रही थी, नमकीन।
1: बिल्कुल, पूड़ी की रेसिपी बता रही थी। अगर आपके पास बेसन है तो आप बेसन लीजिए, पर आपके पास अगर भीगा हुआ अगर मोगर हो ना, तो मोट मोगर जो बोलते हैं,
0: बिल्कुल,
1: अगर वो अगर भीगा हुआ है तो कहना ही क्या है, मतलब कचौड़ी का स्वाद तो बहुत ही उमदा हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: वो भिगो लो आधे घंटे तक और उसको थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लो और तेज मसाला के साथ उसको वापस सेक लो और उसकी स्टफिंग बना लो पूरी की,
0: स्टफिंग,
1: और बस वो पूरी की और उसको खस्ता एकदम
0: आटे में बीच में डाल के उसको सेलो फ्राई कर लो,
1: सेलो फ्राई करो, और बस मेरी तो मतलब बोला नहीं जा रहा, मुंह में इतना पानी आ रहा है और इतनी मधुर है।
0: पर जो पूरी बनेगी इसे अपने साथ जरूर ले जाए, और ले जाए इस गर्मी में कुछ खास, जैसे चटनियां, जैसे पुदीने की चटनी है ना, लहसुन की चटनी जायका बढ़ाने के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगी। और अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है,
1: और इन्हीं प्यारी भावनाओं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। तो अनुमति दीजिए माधवी व्यास
0: और माधुरी शर्मा को, नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को प्यार से जीते रहिए।

मैं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी श्रीमती माधुरी शर्मा और श्रीमती माधवी व्यास। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित मिड डे न्यूज और उसके बाद दोपहर समाचार। कृपया मिड डे न्यूज का इंतजार करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य

0: की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।

0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़े। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकननेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएब अल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर लक्षद्वीप केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलावारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 और 30 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाए हुए गीत, फिल्म का नाम था बेमिसाल। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को सुनिए, फिल्म है दूसरा आदमी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम दूसरी सभा लेकर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: 415.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने को है हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। इस सभा में लीजिए सबसे पहले सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर

0: हुई जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 5:05 हुए हैं। अब हमारे युवा मित्र अपना कार्यक्रम सुनेंगे।

0: नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी, आपके और हमारी तरह युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम। और आज आपके साथ मैं प्रियंका सोनी
1: और मैं हर बार की तरह आपके साथ माधव। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि युवाओं का जो सबसे फेवरेट सेगमेंट आकाशवाणी आपके लिए लेकर आता है युववाणी, उसके अंदर युवा सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इसलिए भी क्योंकि इसमें बात युवाओं की होती है। और प्रियंका, तुम्हें पता ही है आजकल युवाओं का इंटरेस्ट पहाड़ों में कितना है।
0: ये तो तुमने ठीक कहा माधव।
1: खैर, पहाड़ों से याद है बीकानेर का मौसम देखो, अभी प्यारा हो रहा, मतलब उतनी गर्मी नहीं रह रही, ये भी बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है आप सब लोग घड़ी की सुई 5 बजे को देख करके और इस मौसम के हालात को देख करके बढ़िया चाय कॉफी का नाश्ता लेकर के हमारे शो के लिए सुनने के लिए तैयार होंगे।
0: और उसी चाय या कॉफी के कप के साथ अगर गर्मा गर्म तेल से निकलकर स्वाद की गलियों से होता हुआ जब समोसा पेट के अंदर उतरता है तो पेट भी कहता है कि आज तो तुमने दिल जीत लिया।
1: क्या बात है। और मैं तुम्हें बताऊं, वही समोसा अगर बीकानेर का हो तो क्या कहना, वो उसके ऊपर का जो कहते हैं ना हल्का हल्का बारीक सा कुरकुरापन और उसके अंदर के आलू की नरमी, मैं कहता हूँ अगर स्वर्ग कहीं है तो वो यही है।
0: लेकिन माधव, ये खुशी बड़ी चालाक होती है, बहुत ज्यादा देर तक टिकती नहीं।
1: ऐसे कैसे?
0: देखो, मजे की बात यह है कि थोड़ी देर बाद हमारा पेट भारीपन की शिकायत करने लगता है और हम लोग दोष खाने को देते हैं।
1: यार, बात तो ये तुम्हारी सही है, लेकिन अक्सर हम इसके अंदर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो ये कि हम दोष तो दे देते हैं लेकिन ये पूछते ही नहीं कि शरीर ठीक है या नहीं, क्योंकि सिर्फ जुबान का ही ख्याल रखते हैं। बस ये देखते हैं कि भाई बस अब पेट बढ़िया खुश हो गया, स्वाद आ गया, दैट्स इट।
0: और कभी नोटिस किया दोस्तों आपने, जब आपकी बॉडी थकी हुई होती है तो दिमाग में भी अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम में ऐसे लगता है कि शरीर सही नहीं है और मूड सही नहीं है। उस वक्त ये नहीं बता पाते कि मैं महसूस क्या हो रहा है ना, बस एक ही जवाब आता है, बस मेरा मन नहीं लग रहा, बस मुझे अकेला छोड़ दो, कमरे में अंधेरा कर दो, ऐसी ऐसी एक चीज आ जाती है। जबकि इसके पीछे की वास्तविक वजह होती है आपके शरीर का इम्बेलेंस, आपकी बॉडी का इम्बेलेंस, जिसकी तरफ हम लोग ध्यान देने से बहुत बार चूक जाते हैं।
0: एकदम ठीक कहा तुमने दोस्तों, अगर आप शरीर को पूरी नींद, हेल्दी खाना और भरपूर पानी नहीं देंगे तो दिमाग से समझदारी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उसी अनफेयरनेस की वजह से फिर शरीर से आती है इरिटेशन, जो हम कह देते हैं कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इरिटेशन, माइंड के अंदर अजीब अजीब सी बातें आना, जी घबराना जैसी चीजें, ये सारी इसी की रिजल्ट्स होते हैं।
0: बिल्कुल सही। जबकि दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि सुबह उठते ही आपने मोबाइल देखा या पहले खुली हवा में सांस ली?
1: बहुत, ये तुमने बहुत सही बात कही है प्रियंका। आज की डेट में युवाओं की, स्पेशली हमारे एज ग्रुप की ये कंडीशन है। मैं जो सुन रहे हैं, अगर आप भी देखें, खुद के रूटीन को भी देखें, तो आप पाएंगे कि सुबह उठते ही हमारे दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो थॉट ये होता है कि भाई फोन कहाँ है, और उस फोन के अंदर जल्दी से देख लो कि मैसेज आया नहीं है, जल्दी से देख लो कि नोटिफिकेशन आया नहीं है। मतलब आप ये मान लीजिए इस पूरी दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी आपके नाजुक से कंधों पर ही रखी हुई है। तो सबसे जरूरी ये है दोस्तों, मोबाइल की दुनिया को दरकिनार करके सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा शरीर कैसा है। सुबह उठते हम ये देखें हमने 2 गिलास 3 गिलास पानी पिया या नहीं, हम ये देखें हमें प्यास लगी है या नहीं, हमारा शरीर क्या मांग रहा है उसकी तरफ हम देखने लगेंगे तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। और वो देखने के लिए एक चीज और है, करना कुछ नहीं है, करना सिंपल सा है कि आपकी बॉडी क्या इंडिकेशन दे रही है। अगर आपको लग रहा है प्यास लग रही है तो पानी पियो, लग रहा है भूख लग रही है तो खाना खाओ। लेकिन इन सब चीजों से साइड होकर के हम YouTube पे क्या सर्च करते हैं, हाउ टू बी फिट इन 21 डेज।
0: बिल्कुल।
1: How to be activated in 21 days in 1 week और motivational videos, जिनकी इनकी कोई खास जरूरत होती नहीं है।
0: इन सब के साथ दोस्तों आप नींद भी पूरी लें, क्योंकि स्वस्थ शरीर

0: बहुत बड़ी बात नहीं, ये आज की नीड है। और जब शरीर ठीक होता है तो दिमाग आपका अपने आप ही हल्का महसूस करने लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और सोच साफ होती है सबसे बड़ी बात। जब आपका पेट साफ होता है, आपका शरीर अच्छा होता है, तो आपकी सोच भी उसके साथ साफ रहती है, गुस्सा कम आता है, मन शांत रहता है, चीजों को संभालने की आपकी जो कैपेसिटी है, चीजों को डील करने की जो आपकी स्किल्स है, वो बेटर बनती है।
0: और इसीलिए तो हमारे बड़े भी एक बात कहते थे कि बेटा शरीर का ध्यान रखो, दिमाग तो खुद अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। अगली बार जब कुछ बहुत ज्यादा ऑयली खाने का मन करे तो
1: एक पल रुकिए और खुद से ये पूछ लीजिए कि शरीर आज आपसे चाहता क्या है। क्योंकि स्वाद अगर पल भर का है तो सुकून शरीर और दिमाग के साथ चलने से ही आता है।
0: और क्योंकि जब शरीर कुछ और चाहे और दिमाग कुछ और सोचता है, तब आपका दिल एक ही बात कहता है कि मैं तो लुटपुट गया।

0: अब वक्त है दोस्तों आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां रोज हम आपसे पूछते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर से जुड़े दो प्रश्न। तो आज के लिए आपका पहला प्रश्न है,
1: भारतीय स्टेट बैंक SBI ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बिना किसी गारंटी के त्वरित ऋण यानी कि क्विक लोन्स प्रदान करने के लिए किस वित्तीय

0: फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाया है।
1: और आज का आपका दूसरा प्रश्न है कि हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है।
0: ये जो गैस है ना, अभी प्रियंका तुमने कहा, हम जब स्कूल में थे हमें ऐसा लगता था इस गैस के गुब्बारे कहीं से मिल जाए तो क्लास में ला करके फोड़ देते हैं, सारे हंसते रहेंगे, बड़े मजा आएंगे।
1: बिल्कुल, बचपन की याद दिला दी तुमने।
0: बिल्कुल।
1: तो ये थे दोस्तों आज के दोनों प्रश्न, अब आप इनके जवाब सोचिएगा और कार्यक्रम के अंत में जब हम इनके जवाब देंगे तो हमारे जवाबों से मिलाइएगा। आइए अब रुकते हैं कुछ संदेश के लिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: एक जमाने से कहा

0: फिल्म भी स्टाइल गया है पटल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पता है माधव, अभी स्टूडियो आते समय फाटक बंद था, कोर्ट गेट फाटक, पता ही है तुम्हें,
3: एवरग्रीन।
2: तो जब मैंने गाड़ी रोकी तो एक अजीब सी चीज देखी आज।
3: क्या इतने अच्छे मौसम में तुमने अजीब सा देखा?
2: हाँ, आज मैंने देखा एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, फोन कान पर और दूसरे तरफ हाथ में सिगरेट।
3: अरे भाई, ये ना प्रियंका सबसे अनकॉमन चीज है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होती जा रही है, और हमें लगभग सड़कों पर ऐसी चीजें रोजाना आपको देखने को बहुत इजीली मिल भी जाती है।
2: लेकिन मैंने आज देखा कि फोन पर वो अपने घर पर या शायद किसी से बात कर रहा था।
3: अच्छा।
2: बोल रहा था कि हाँ आ रहा हूँ, बस 5 मिनट और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तभी पीछे से एक छोटा सा बच्चा आया, शायद उसका ही था, और बोला कि पापा चलो।
3: फिर
2: उसने सिगरेट जल्दी से पीछे की, जैसे कुछ छुपा रहा हो।
3: ये तो जाहिर सी बात है ना, ऐसा तो होगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी जानता है कि वो जो कर रहा है ये चीज गलत है, ये ठीक नहीं है,
2: और देखो फिर भी छोड़ नहीं पा रहा था।
3: अरे यही तो तंबाकू की असली कहानी है प्रियंका। इसे कोई इंसान शौक में शुरू करता है, तो कोई प्रेशर में, तो कोई कुछ नया ट्राई करने की जिद के अंदर, और फिर एक दिन ये आदत बन जाती है, उसको जकड़ देती है पूरी तरीके से।
2: जो सिर्फ शरीर को ही नहीं पकड़ती, पूरी दिनचर्या को बांध लेती है। आपकी डेली रूटीन में ये चीजें दिखाई देती है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असर तुरंत नहीं दिखता।
3: बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हम ऐसा सोचते भी रहते हैं कि अभी तो सब ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, अब तो सब बढ़िया, देखो अभी एक हमने सिगरेट पी कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है, जबकि आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देता है।
2: दोस्तों, आपको ये सब बढ़िया लगता है, लेकिन आपका शरीर अंदर ही अंदर हिसाब जोड़ रहा होता है। और पता है माधव, काफी रिपोर्ट्स में भी सामने आया है कि बहुत सारे युवा इसकी चपेट में आ चुके हैं।
3: अरे,
2: हम ये नहीं कह रहे कि दोस्तों कि आप ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन जो कुछ लोग करते हैं उनसे आग्रह है कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
3: बिल्कुल दोस्तों, और आकाशवाणी बीकानेर की तरफ से जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, बीकानेर में बढ़ते हुए नशे को देखते हुए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, और हर शहरवासी की जिम्मेदारी है कि वो बढ़ते हुए नशे को रोकने के लिए अपने स्तर पर जो भी संभव प्रयास कर पाए वो जरूर करे। बीकानेर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन नीलकंठ भी नशे की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यदि आपको कोई भी नशा बेच हुआ, नशा करता हुआ या नशे से संबंधित किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय करता हुआ अगर आपको पाया जाता है, अगर आप उसे देखते हैं, तो आप तुरंत उसे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें। आपकी सूचना, आपकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी और उसके

0: कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा शहर है, इसे सुधारने की, इसे हमेशा स्वच्छ और अच्छा रखने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि आप जो हमारे असामाजिक तत्वों को सड़कों पर देखते हैं जो किसी भी प्रकार के नशे की चपेट में है, उनसे आप शहर को मुक्त करने का प्रयास करें और इस बढ़ते हुए नशे को देखते हुए और इस नशे को कम करने के प्रयास से आज हम बना रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
1: अगले दिवस मनाया जा रहा है याद दिलाने के लिए कि थकान का इलाज तंबाकू तो कभी नहीं होता।
0: बिल्कुल, और राहत का रास्ता शरीर को नुकसान पहुंचाकर कभी भी नहीं निकलता।
1: हम मानते हैं दोस्तों कि इसको छोड़ना इतना भी आसान नहीं है,
0: लेकिन हर छोड़ी हुई सिगरेट
1: किसी आने वाले नुकसान को टाल सकती है
0: और शायद किसी बच्चे को उसके पापा का साथ ज्यादा दिनों तक मिल सकती है।
1: तो आज इस 31 मई को
0: अगर आप में से कोई भी ऐसा करता है या ऐसा किसी को करते हुए पाता है तो एक बार जरा खुद से जरूर पूछिए, क्या ये सब सच में सही है मेरे लिए, इनके लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए? क्योंकि कुछ आदतें साथ नहीं निभाती
1: बल्कि अपनों का साथ छीन भी लेती हैं।
0: बिल्कुल, और ये फैसला भी साइकिल चलाने जैसा ही है, जहां आपको थोड़ा बैलेंस और थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना होगा।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

छब्बीस साल और एक फानी सफर आकाशवाणी जिसमें संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादू माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों, मैं अभी हाल ही कुछ दिन पहले की बात है, रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र जो है युवा की होती है, हेल्थ अच्छी होती है और अगर शारीरिक और मानसिक दृष्टि से देखा जाए तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पाते हैं कि उनके पास कुछ स्तर पर रोजगार की कमी है, कौशल की कमी है। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी इतनी मजबूत नहीं है कि हम बड़े इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले पाएं और कौशल सीख पाएं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बेहतरीन योजना लाई गई है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की आर्थिक जो कह सकते हैं कि कमियां होती है उनको दूर करके आपको कौशल सिखाने के लिए प्रयास किए गए हैं। उस योजना का नाम है पीएम कौशल विकास योजना 4.0 और ये योजना इतनी शानदार और इतनी बेहतरीन है दोस्तों कि इसके अंतर्गत आप बहुत सारी डिफरेंट चीजें सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट और काफी सारी चीजें। आप अपने नजदीकी किसी भी पीएम केवाई सेंटर में जाएंगे तो आप किसके बारे में जानकारी मिलेंगे। और प्रियंका, मुझे लगता है तुम्हारा जिधर घर है तुम वहां से आती हो, उधर भी एक सेंटर है, तुमने नाम सुना है कभी पीएम केवाई का?
1: नहीं, मैंने सुना तो है बट मुझे ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या क्या। मुझे लगता है तुम्हें बताना चाहिए।
0: दोस्तों, ये भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट योजना है और इसका मेन जो मोटिव है वो है युवाओं को अलग अलग कामों की ट्रेनिंग देना ताकि उन्हें नौकरी मिलने में आसानी हो, उनकी स्किल को डेवलप करना।
1: सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई कोर्स की तरह है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोर्स ही मान लो तुम इसे। 3 महीने से टैली आरके सेल के कोर्सेज होते थे ना, वैसा सा एक कोर्स है। अच्छा। उसके अंदर मेनली जो आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, जो आपके टेक्निकल कोर्सेज

0: हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे शानदार कोर्सेज हैं और ये कोर्सेज बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड है।
1: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आज के टाइम में एआई और डिजिटल स्किल्स ये तो बहुत पीक डिमांड पर है।
0: बिल्कुल, और इससे भी एक अच्छी बात पता है क्या है?
1: क्या
0: सबसे ज्यादा इसके अंदर ज्यादातर ट्रेनिंग्स फ्री होती है, मतलब कि आपको सर्टिफिकेट का भी पैसा नहीं लगेगा, आपकी ट्रेनिंग का भी पैसा नहीं लगेगा और आपकी इंटर्नशिप का भी पैसा लगेगा, मतलब आपकी किसी भी जगह पर कोई भी तरीके से फीस नहीं लगने वाली, सिर्फ इनकम ही है, आउटगोइंग कुछ भी नहीं है।
1: सच में क्या बात है, फिर तो काफी लोग इसका फायदा आराम से उठा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और खासकर वो युवा दोस्तों जो पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं मान लो तुम्हारे मेरे जैसे, 2 बजे कॉलेज खत्म हो जाता है जनरली, उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखूं, अब तुम जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए तो उसके लिए प्रॉम्प्ट राइटिंग आनी चाहिए, तो आप वहां से जाकर के ये कोर्सेज कर सकते हैं।
1: तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है माधव इसके अंदर, तो तुम मुझे ये बताओ कि इसमें एडमिशन कैसे मिलता है?
0: बहुत बहुत ही इजी है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आधार कार्ड और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर लगते हैं और आपको लेके जाना है, फिर अपने नजदीकी जो भी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और वहां पर आप जहां पर भी जाएंगे उसके सेंटर के ऊपर उसके ऊपर बोर्ड लगा होगा PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके।
1: अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ, ट्रेनिंग तो मैं कर लूंगी लेकिन इसके बाद कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है या नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपको सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलता है और उस सर्टिफिकेट से आपको नौकरी मिलने में भी मदद होती है क्योंकि कई कंपनियां सर्टिफाइड लोगों को प्रेफरेंस देती है।
1: ये तो सच में बहुत बढ़िया योजना है, मुझे लगता है कि मेरे साथ में अपने भाई और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताऊंगी।
0: अरे बिल्कुल बताना चाहिए प्रियंका, और आजकल की अगर हम देखें ना दोस्तों, तो सिर्फ डिग्री डिमांड रह भी नहीं गई, आजकल आपको स्किल आनी, आपके अंदर आर्ट आनी बहुत जरूरी है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मुझे जनरली मैं एआई का यूज बहुत करता हूं, आप लोग भी दोस्तों करते होंगे। अब आपने कई बार देखा होगा प्रॉम्प्ट लिखते वक्त हमें लगता है कि यार कैसे एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे दे कि हमारी डिजायर्ड जो चीजें हैं वो हमें मिल जाए, तो इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं जिससे आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है ये सिखाया जाता है। मैंने अभी ही ये कोर्स किया और उसके बाद मैंने खुद ने देखा है कि प्रॉम्प्ट्स देने के लिए जो मेरी स्किल है वो काफी ठीक हो गई है पहले से।
1: तुम्हारा एक बात बताओ कि अब तुम इसमें कौन सा कोर्स करने का सोच रहे हो?
0: मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का तो कर लिया, तो मैं सोच रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, और एक इसके ऊपर और है कि आप वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर, क्योंकि जाहिर से बात हम रोज हमारे दोस्तों के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, तो हमारे लिए ये स्किल सीखनी बहुत जरूरी है, तो मैं सोच रहा हूँ ये एक कोर्स इसके अंदर करूँ, और आजकल काफी डिमांड भी है इन चीजों की।
1: हाँ ये तो मैं भी करना चाहती हूँ, और इसमें फ्यूचर भी काफी अच्छा है।
0: बहुत अच्छा है, देखो जहाँ हम मेहनत करते हैं ना दोस्तों, फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। काम के अंदर नीड होती है सिर्फ एक चीज की और वो होती है मेहनत की, लगन की, उसके बाद रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, और सरकार भी ये चाहती है कि युवा सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपने पैरों पर खड़े हों।
1: फिर तो लगता है इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, और आप इसकी डिटेल्स को जान सकते हैं स्किल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वहां जाते ही आपको उसके सारी जो कोर्सेस कराते हैं वो और इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं वो सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और जब भी स्किल्स की बात आती है दोस्तों, तो आप सब जानते हैं कि हम एक कम्युनिटी ऐसी है जिनको कभी नहीं भूल सकते, वो है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारे दो सशस्त्र सेना बल है, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। आइए जानते हैं उनके बारे में कैलाश खेर की आवाज में।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: मानव पता है मुझे डांस बहुत पसंद है.
1: क्या बात है.
0: और इसीलिए राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य ने मुझे हमेशा से आकर्षित किया है.
1: ये कोई नई बात नहीं है कि राजस्थान के लोक नृत्य लोक नाट्य आपको आकर्षित करते हैं. दोस्तों राजस्थान की लोक कला इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है, इतनी शानदार है, हर कोई उसकी तरफ खींचे चला जाता है.
0: और खासकर जब कलाकार रंग बिरंगे कपड़े पहनकर डांस और अभिनय करते हैं तो मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है.
1: बिल्कुल. और दोस्तों हमारे राजस्थान की संस्कृति आखिर है ही इतनी खास. यहाँ के लोग नाट्य लोक नाट्य जो है पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसी वजह से लोग यहाँ पर दूर दूर से इनको एंजॉय करने आते भी हैं.
0: अभी कुछ हफ्ते पहले की बात देख लो, मेरी मैम ने ख्याल गवरी और भवाई के बारे में बताया था और मुझे सब इतना इंटरेस्टिंग लगा मैं पूरे लेक्चर में उनके पास में बैठी रही.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और मेरी एक सिस्टर है वो भी ये सब डांस सीखने जाती है और मुझे भी उसने जरा जरा बताया कि भवाई जो है काफी एक इंटरेस्टिंग मूव इसके अंदर इंक्लूड किए गए क्योंकि उसमें कलाकार मैंने सुना सिर के ऊपर मटके के ऊपर मटका मतलब कई मटके रखकर नृत्य करते हैं.
0: बिल्कुल ठीक सुना है तुमने. और इतना अच्छा बैलेंस बनाते हैं लोग तालियां बजाते थकते नहीं है.
1: क्या बात है. भवाई केवल नृत्य नहीं है दोस्तों बल्कि कलाकारों की मेहनत और कला का प्रदर्शन है वास्तव में.
0: और भवाई के साथ साथ मुझे ख्याल भी बहुत पसंद आया. उसमें गीत संगीत और अभिनय का बहुत ही सुंदर मेल देखने को मिलता है.
1: ये जो ख्याल है ना प्रियंका ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य माना जाता है. इसके कई रूप भी हैं जैसे कुचामनी ख्याल और जयपुरी ख्याल. ये लोकेशन है ना राजस्थान के अंदर कुचामन सिटी जयपुर वहां के.
0: हाँ ठीक कहा तुमने. और इसके साथ ही गवरी भी बहुत अलग लगी मुझे. ये भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य है ना.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और इसके अंदर मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से दोस्तों लेकिन इसके साथ एक और टाइप है डांस का वो काफी फेमस है हमारे यहाँ काल बेलिया. वो बहुत फेमस है. इसमें धार्मिक कथाएं भी दिखाई जाती है गवरी के अंदर तो और कलाकार गांव गांव जाकर इसका प्रदर्शन करते हैं.
0: हाँ अब देखो राजस्थान की लोक परंपराएं कितनी अनोखी है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. लोक नाट्य हमें अपनी संस्कृति और इतिहास से जोड़ कर रखते हैं दोस्तों.
0: इतिहास से ये तो जोड़ कर लगते हैं लेकिन

0: लोग आजकल मोबाइल और टीवी से जुड़े रहते हैं, इसी में व्यस्त रहते हैं, इसलिए लोक कलाओं को कम महत्व देने लगते हैं।
1: साथियों, आधुनिक चीजों को अडॉप्ट करके समय के साथ चलना इंसान की पहचान है, लेकिन इन सबके साथ हम संस्कृति को कहीं भूल न जाएं, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
0: अगर हम अपनी लोक कला को बचा कर रखेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान पाएगी।
1: बिल्कुल, इसके लिए हम अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको इन चीजों के बारे में सिखा सकते हैं, डांस की मूल सिखा सकते हैं। घर की जो शादियां होती है वहां पर लोक नृत्य से जुड़ी हुई डांस परफॉर्मेंसेस को हम इंक्लूड कर सकते हैं, स्कूलों के अंदर ऐसे कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं।
0: और मुझे तो इतना अच्छा लगा कि अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं भी लोक नृत्य जरूर सीखूंगी।
1: जरूर सीखो प्रियंका, जरूर सीखो। आखिर युवाओं की यही तो एक खास बात है कि युवा जब चाहे जो चाहे नई चीज सीख सकता है, इस उम्र की यही एक बहुत ही खास बात है।
0: और मुझे तो डांस वैसे भी बहुत पसंद है। वैसे दोस्तों, लोक नृत्य में जो ऊर्जा और जो खुशी मिलती है ना वो अलग ही महसूस होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और राजस्थान की संस्कृति जो है वो वास्तव में बहुत रंग बिरंगी और शानदार है। मुझे आज भी याद है राजस्थान के अंदर जब सर्दी आती है दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास, तो जैसलमेर के पास जो सैंड ड्यून्स है उनके ऊपर जो कालबेल या डांस की जो अलग अलग तरह की बैंड्स आते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वहां पर एक जो माहौल बनता है मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकता स्टूडियो के अंदर की वो किस टाइप का एटमॉस्फेयर होता है, बड़ा शानदार होता है। वहां पर डिफरेंट टाइप की जो है डांस मूव्स और लोग इन्वॉल्व करते हैं, बहुत अद्भुत चीज है वो, तो आपको देखने जाना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आपकी संस्कृति हमारी वो।
0: बिल्कुल,

0: दोस्तों याद है ना आपको, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे और अब वक्त है उन दोनों प्रश्नों के जवाब जानने का। उम्मीद है कि आपने सही गैस किया होगा। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था,
1: भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों को बिना किसी गारंटी के त्वरित ऋण यानी कि क्विक लोन्स प्रदान करने के लिए किस वित्तीय फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाया है, जिसका जवाब है
0: यू ग्रो कैपिटल। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, जिसका सही जवाब है
1: नाइट्रस ऑक्साइड।
0: बिल्कुल, उम्मीद है कि आपने दोनों प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही सोचे होंगे। इसके साथ अब वक्त है दोस्तों रोजगार सूचना का।
1: साथियों, RSSB ने वरिष्ठ एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
0: दोस्तों इसमें कुल पद 3,951 है। इस भर्ती की परीक्षा 22 और 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, इन सब के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: मगर ध्यान रहे, ऑनलाइन आवेदन मात्र 25 मई से 23 जून 2026 तक ही भरे जाएंगे, तो जल्दी ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन करने के लिए इनिशिएट करें।

0: और बच्चे की जान की जब बात आती है दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे तुरंत मोबाइल और इंटरनेट याद आ जाते हैं।
1: तुम सही सोच रहे हो, यही तो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, डिजिटल प्राइवेसी। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारी निजी जानकारी गलत हाथों में जा सकती है दोस्तों।
0: बिल्कुल दोस्तों, इसके जो हम कह सकते हैं कि ये जो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हैं, इनसे बचने का बहुत सीधा सा और बहुत ईजी रास्ता है, वो ये है कि आप अपनी हर छोटी से छोटी चीजों को सोशल मीडिया पर शेयर करने के जरा सा संकोच करें। फोटो, लोकेशन, स्कूल, यहाँ तक छोटी छोटी चीजों को हम अगर शेयर करने से बचें तो काफी बच सकते हैं इन चीजों से।
1: बिल्कुल दोस्तों, किसी किसी को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असल में ये चीजें शेयर करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई भी इन जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है।
0: बिल्कुल, और इससे साइबर फ्रॉड, फर्जी अकाउंट बनाना, किसी की पहचान का दुरुपयोग करना, और कई बार तो लोग धोखा देकर के पैसे भी निकाल लेते हैं,
1: ये तो बहुत डराने वाली चीजें हैं। तो हमें फिर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: सबसे पहले हमें अपने पासवर्ड्स को मजबूत रखने चाहिए, अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स को मिला करके। इसके साथ साथ हमें ओटीपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए।
1: इसके साथ दोस्तों, हमें अनजान लिंक या मैसेज पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं हो। तब तक कई बार ये फिशिंग जैसे लिंक होते हैं जो हमारी जानकारी चुरा लेते हैं।
0: बिल्कुल, और इसके साथ साथ प्राइवेसी सेटिंग्स हमेशा प्राइवेट या फ्रेंड्स ओनली पर ही रखनी चाहिए, अन्य लोगों को अपनी आईडी में ऐड नहीं करना चाहिए।
1: सही कहा तुमने, कभी कभी लोग अपनी लोकेशन भी शेयर कर देते हैं, ये भी खतरनाक हो सकता है दोस्तों।
0: कोशिश करें कि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में केवल उन्हीं लोगों को ऐड करें जो आपके नजदीकी हो, जो आपके करीबी हो और जिनको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो। साथियों, आज के समय में डिजिटल अरेस्ट और फ्रॉड जैसी चीजें लगातार बढ़ रही है, इससे लोगों को आर्थिक और मानसिक और सामाजिक हर प्रकार से कई तरह का नुकसान हो रहा है। हम अपनी जागरूकता को अपना करके और हम अपनी इंटेलिजेंस को हमारे काम में ला करके इन सारी चीजों को रोक सकते हैं, इन सारी चीजों से बच सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज जो कि हाल ही में हम सब लोगों ने देखी, बच्चों की आंखों के ऊपर जो फोन की रेडिएशन है उसका बहुत बुरा और खराब इम्पैक्ट हो रहा है।
1: बिल्कुल सही,
0: तो कोशिश करें कि आप अपने घर के छोटे बच्चों को स्पेशली 8 से लेकर के 15 साल तक के, 20 साल तक के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उन्हें फोन से दूर रखें। अगर आप हाल ही में न्यूज और आर्टिकल पढ़ा हो तो लगातार बीकानेर के अंदर रोज 60 से 70 बच्चे पीबीएम के अंदर ऐसे आ रहे हैं जिनको किसी न किसी प्रकार की आंखों की समस्या है, और ये मात्र मात्र फोन के कारण आ रही है।
1: इसी के साथ अब वक्त हो चला है दोस्तों आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम पर।
0: बिल्कुल,
1: तब तक के लिए मैं प्रियंका सोनी
0: और मैं आप सबके साथ हर बार की तरह माधव, उम्मीद है आप खुश होंगे, मस्त होंगे। बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, वनस्पतियों का ख्याल रखते रहिए, बढ़ती गर्मी के अंदर पानी का निरंतर सेवन करते रहिए, पक्षियों के लिए पानी भर करके रखते रहिए, और अपने आसपास के वन्य जीव और वन्य जीव संपदा का ख्याल रखते रहिए। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

ये था युवा मित्रों का कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल

रही हैं। संध्या के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। दिल्ली से ही रिले होने वाला एक और कार्यक्रम है अनुगूंज। समय है रात 9:30।

रात 9:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। लोक संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात 8:30 पर। रात 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत और सुगम संगीत का समय है संध्या 7:45।

जगत होगा संध्या 7 बजे। कार्यक्रम में आज की चर्चा के विषय है खेती में लागत कम करने के सुझाव। श्री अन्न से स्वाद व सुस्वास्थ्य का समन्वय, तारबंदी योजना, भारत की जनगणना 2027 से राष्ट्रीय विकास को गति, इन सब के साथ ग्रामीण जगत कार्यक्रम में आप लोकगीत और लोक भजन भी सुन सकेंगे।

अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या 6:05 पर आप सुन सकते हैं एक ही कलाकार। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अरिजीत सिंह के गाए हुए कुछ फिल्मी नगमे।

0: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेरी उम्र 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। पहले सुनिए ये आवाज और पहचान।

का वजूद मेरा। आज भारतीय फिल्म संगीत का वजूद इस कलाकार के बिना शायद नहीं है। उस कलाकार का नाम है, जी हां, आपने सही पहचाना, अरिजीत सिंह। आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम एक ही कलाकार और मैं हूं आपका अपना साथी डॉक्टर अशोक प्रेम। इस कार्यक्रम में हम हर बार मिलते हैं एक ऐसे कलाकार से जिसकी कला ने लाखों दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज हम बात करेंगे उस आवाज की जिसने प्रेम को भी सुर दिए, दर्द को भी आवाज दी, दोस्ती को भी संगीत दिया और टूटे हुए दिलों को भी सहारा दिया। एक ऐसी आवाज जो पिछले एक दशक से अधिक समय तक भारतीय फिल्म संगीत की सबसे बड़ी पहचान बनी रही। जी हां, आज के हमारे कलाकार हैं अरिजीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में जन्मे अरिजीत सिंह का संगीत से रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। उनकी माता एक प्रशिक्षित गायिका थी और परिवार में संगीत का वातावरण था। बचपन में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, तबला और पियानो का प्रशिक्षण लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अरिजीत सिंह केवल गायक ही नहीं बल्कि एक अच्छे संगीतकार और वादक भी है, और बहुत सारे लोगों के मन में एक छवि उनकी ये भी है कि जब वो महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के पांव छूते हुए मैदान पर दिखाई दिए थे। साफ है, क्रिकेट को बहुत प्रेम करते हैं। साल 2005 में वे टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो फिल्म गुरुकुल में दिखाई दिए। हालांकि वे विजेता नहीं बने, लेकिन उनकी प्रतिभा ने संगीत जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए और लगातार अपनी कला को निखारते रहे। फिर आया साल 2013 और एक गीत जिसने उनकी जिंदगी बदल दी।

केवल गीत नहीं था बल्कि एक भावनात्मक आंदोलन बन गया था। कॉलेज से लेकर कैफे तक, रेडियो से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही गीत सुनाई देता था। इस गीत में अरिजीत सिंह को रातों रात देश का सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर बना दिया। लेकिन उनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण केवल उनकी आवाज नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता है। उनकी गायकी में बनावटीपन नहीं है, वे गीत को जीते हैं। यही कारण है कि श्रोता उनके गीतों में अपनी कहानी ढूंढ लेते हैं। अगर आज के दौर में दर्द भरे गीतों की बात हो और अरिजीत सिंह का नाम ना आए ऐसा संभव नहीं है। उनकी आवाज में एक अजीब सी आत्मीयता है, जब वे दर्द गाते हैं तो लगता है जैसे दिल स्वयं बोल रहा हो। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे ऊंचे शुरू में भी भावनाओं को खोने नहीं देते। यही कारण है कि लाखों लोग अपने जीवन के कठिन पलों में उनके गीत सुनते हैं। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसने प्रेम, समर्पण और अधूरे रिश्तों की भावना को बेहद खूबसूरती से व्यक्त किया।

श्रोताओं, आज जब अधिकांश कलाकार ग्लैमर और प्रचार का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, अरिजीत सिंह इससे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। वे अक्सर मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं और कई बार उन्हें अपने गृहनगर जियागंज में सामान्य लोगों की तरह घूमते देखा गया है। यही सादगी उन्हें करोड़ों प्रशंसकों के और भी करीब ले आती है। उनकी सफलता जितनी बड़ी है, उनका व्यक्तित्व उतना ही विनम्र माना जाता है। उन्होंने अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए हैं और वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए अपना 8वां फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर किशोर कुमार के रिकॉर्ड की बराबरी की। साथ ही उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान भी प्रदान किया गया। वे कई वर्षों तक भारत के सबसे अधिक स्ट्रीम किए जाने वाले कलाकार रहे और विश्व स्तर पर भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। श्रोताओं, जनवरी 2026 में अरिजीत सिंह ने एक ऐसी घोषणा की जिससे संगीत जगत को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वे फिल्मों के लिए नए प्लेबैक सिंगिंग असाइनमेंट स्वीकार नहीं करेंगे। अपने भावुक संदेश में उन्होंने लिखा, मैं अब नए प्लेबैक वोकल असाइनमेंट नहीं लूंगा, ये एक अद्भुत यात्रा रही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे संगीत से दूर नहीं जा रहे हैं, स्वतंत्र संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत और व्यक्तिगत संगीत प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहेंगे। कई लोगों ने लिखा कि उनकी आवाज ने पूरी पीढ़ी को प्रेम कहानी और भावनाओं को संकेत दिया है। तो ये था आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक और महान कलाकार के साथ। जाते जाते इतना ही कहेंगे कि बरसों में कोई एक ऐसा सिंगर पैदा होता है। अनुमति दीजिए अशोक प्रेम को कार्यक्रम को समेटने की। नमस्कार, आकाशवाणी बीकानेर।

0: तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना, और ये
1: मेरी गुड़िया थी ना।
0: तो दादी आपकी ना?
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं नर तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
0: क्या
2: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: घर घर सूर्य घर।
7: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
8: अरे कॉलेज की यादें छोड़ी, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
7: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
8: कहाँ से पता चलेगा?

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें जो कुछ नया कर सबको प्रेरणा देते हैं। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़ने का आग्रह किया।
1: साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा। स्वदेशी पेय पदार्थों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इन्हें अपनाने की अपील की।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने हाल ही की अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार द्वारा चोल काल की प्राचीनतम पट्टिकाओं को भारत को सौंपने पर इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं के उत्साह का जिक्र करते हुए देश के युवा साथियों से इस विधा में पारंगत होने की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े विषय पर क्लब बनाकर नया सीखने का सुझाव दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए देश के विभिन्न अंचलों में हो रहे नवाचारों, राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों तथा गांव कस्बों की बातों के साथ गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रेरणादायी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने रांची में संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रिकॉर्डधारी विजेताओं को बधाई देते हुए इसे देश के खेल भविष्य के लिए उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर राज्य भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर युवाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ें तथा नवाचार अपनाकर अपने कौशल में बढ़ोतरी करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार युवाओं को सकारात्मक परिवर्तन और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
2: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
0: खेती में उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा मौसम

संबंधी चुनौतियों में किसानों को समय पर सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करेंगे। अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया।

0: आग्रह किया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडको की भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। रिडको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश ओला ने बताया कि प्रस्तावित नीति में सामान्यतः भूखंडों का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग एंड प्ले, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लीज का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा नई नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित आवासीय तथा सामाजिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सुविधाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित नीति में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में रिडको द्वारा विकसित औद्योगिक टाउनशिप में अब भूखंड आवंटन, प्रबंधन तथा निस्तारण हो सकेगा। NICDC द्वारा जारी मॉडल फ्रेमवर्क पर आधारित ये नीति राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री टिफनी ट्रंप आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा पर रहीं। वे अपने पति माइकल बोलोस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर पहुंचने पर उनका पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। टिफनी ट्रंप की जैसलमेर यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ विशेष सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। टिफनी के जैसलमेर आगमन से इस पर्यटन नगरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला मुख्यालयों पर साइकिल रैली निकालकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। जालौर में निकाली गई रैली में बड़ी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर नाथो तालाब पर कार्यक्रम रख जल पूजन किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में अभियान के तहत भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत और नींबू पानी पिलाया गया। बालोतरा के जसोल में प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता बढ़ाई गई। इसी तरह पाली के तखतगढ़ में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गंगा जल का पूजन कर आम जन को शपथ दिलाई। करौली के पांचना बांध पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने वृक्षारोपण और जल पूजन किया। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां मुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंची टीम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, MPT रिचार्ज शाफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: जोधपुर की बड़ली ग्राम पंचायत में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जिलाधिकारियों के साथ बड़ली भैरूजी तालाब पर श्रमदान कर आम जन से सहभागिता निभाने का आह्वान किया। प्रदेश के कई भागों में बीते दो दिनों से बना हुआ आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि कुछ जगहों पर आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चलने और विभिन्न स्थानों पर बरसात के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर तथा डीडवाना, कुचामन के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर के लिए येलो अलर्ट

0: बताया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के 19वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में दोनों टीमें चौथी बार एक दूसरे के सामने होंगी। पहले 3 मैचों में आरसीबी ने 2 में और गुजरात टाइटंस ने 1 में जीत हासिल की थी। दोनों ही टीमों ने लीग मुकाबलों में 9-9 जीत दर्ज की थी और समान अंक हासिल किए थे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। झालावाड़ जिले के 3 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डेस्क से सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार, डीएसपी प्रेम कुमार और डीएसपी हर्षराज खरेड़ा को ये सम्मान दिया गया है। इन्हें विभिन्न अभियानों, जांच और कानून व्यवस्था में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरी बार डीजीपी डेस्क मिली है। इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में एसपी रहते हुए भी उन्हें ये सम्मान मिल चुका है। वहीं हर्षराज खरेड़ा को ऑपरेशन क्लीन राइड और प्रेम कुमार को ऑपरेशन शटर डाउन में प्रभावी रूप से काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर ने विभिन्न उपखंडों के राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि परिवादियों को त्वरित लाभ मिले। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले में कोई भी पुराना राजस्व मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण द्वारा एक ही दिन में 237 मामलों की सुनवाई कर 175 का निस्तारण किए जाने की भी सराहना की। झालावाड़ पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके तहत झालावाड़ में मामा भांजा चौराहे से गावड़ी तालाब और भवानी मंडी रोड तक के मार्ग को आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस मार्ग पर यातायात नियमों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले तथा ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करना है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा कैंपस प्लेसमेंट शिविर लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा ने बताया कि ये शिविर मिनी सचिवालय में लगाया गया। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान फील्ड ऑफिसर, सेल्स प्रतिनिधि, मशीन ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिए गए। झालावाड़ में पिछले दिनों राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता रखी गई। इसमें उदयपुर के व्यांश भटनागर ने ओपन वर्ग का खिताब जीता। वहीं बालिका वर्ग में टीना ब्याडवाल चैंपियन बनी। जिला शतरंज संघ के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि व्यांश ने सभी 6 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। झालावाड़ में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत विकास परिषद की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में महिलाओं को 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है। 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 29 जून तक चलेगा। इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के लगभग 1,48,000 से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। महिला और बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। विटामिन ए की खुराक से रतौंधी और अंधता जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इससे

0: दस्त और निमोनिया के घातक प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि ये खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर उपलब्ध करवाई गई है। झालावाड़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी साइबर अपराधों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके बैंक खातों पर साइबर धोखाधड़ी की 36 शिकायतें दर्ज थी। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों की संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई की। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की ओर से नशा माफिया से जुड़े अपराधियों पर एक्शन लिया गया। उनके द्वारा बनाई गई दुकानों और मकानों तथा अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: कार्यालय माथे राखी जा कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर समेत पदाधिकारी भीड़ आव्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपरे निवास माथे युवा वारे साथे इन कार्यक्रम ने सुन्यो। इन मौके माथे मुख्यमंत्री कहो कि राष्ट्र निर्माण में युवा वारी भूमिका खास है। इन सारू वे सामाजिक सरोकार रे कामासू जुड़े और नवाचार अपनार आपरे कौशल में बढ़ोतरी करे। वणा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विचार युवा माने सकारात्मक बदलाव और विकसित भारत रे निर्माण खातिर प्रेरित करे है।
1: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
0: खेती माए उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने बकत माथे सलाह देने रे खातिर कालेसू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। 30 जून ताई चालन वाला ई अभियान रो शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला सु करेला। अभियान रे चालता पंचायत स्तर माथे सक्रिय भागीदारी और योजनावारो लाभ सीधे गांवा ताई पहुंचायो जावणो पक्को करयो जावेला। कृषि मंत्री सगला राज्यां रा मुख्यमंत्रियां सु इन अभियान माए वारी भागीदारी री खातिर बात करी है। श्री सिंह केंद्रीय मंत्रियां और दूजा जनप्रतिनिधियां सु भी इन पहल माए भेड़ा होने री अरज करी है। वाने कृषि विज्ञान केंद्रां ICAR संस्थाना कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अहलकारा साथे वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी रे साथे इन अभियान ने आगे बढ़ावन री अरज करी है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडकोरी भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति ने सरकार मंजूरी दे दी है। रिडकोरा मुख्य कार्यकारी अहलकार सुरेश ओला बतायो कि प्रस्तावित नीति माए सामान्यतः भूखंडारो आवंटन 99 बरस री लीज माथे करो जावेला। वठीने फ्लैटेड फैक्ट्री प्लग एंड प्ले वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक जड़ा विशेष खेतरा रे खातिर 33-66 बरस ताई रो इन लीज रो प्रावधान राख्यो गयो है। जल शक्ति मंत्रालय काले नवी दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास माथे राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन करेला। इन रो लखस भारत रे जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र ने मजबूत करनो है। मंत्रालय कहो है कि इन कार्यक्रम रो खास आकर्षण एक ऐडी पहल री शुरुआत करनो है जिन रो लखस जल संसाधन प्रबंधन पेयजल और जलवायु परिवर्तन सु निपटनो है। कार्यक्रम रे चालता जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रे बीचे जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन खातिर एक समझौता ज्ञापन माथे दस्तखत कराया जावन री आस है। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेला। यह समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रहा हो। प्रदेश माए चलाया जा रिया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत आज भी कई गतिविधियां राखी जी। जिला मुख्यालय माथे साइकिल रैली निकाल रहे लोगों ने पानी बचावन रो संदेश दियो गयो। जालोर माए निकाली जी रैली माए बड़ी तादाद माए युवा मा हिस्सो लियो। चुरूरा पुलिस लाइन मैदान माए राखी जा श्रम दान कार्यक्रम माए लोगों बढ़ चढ़ भागीदारी निभाई। इन मौके माथे नाथो तालाब माथे कार्यक्रम राखर जल पूजन करो गयो। सरहदी जिला जैसलमेर माए अभियान रे तहत भीषण गर्मी ने बीचे रागीरा ने शरबत और नींबू पानी पिलायो गयो। बालोतरा रा जसोल माए प्रभात फेरी निकालर जागरूकता बढ़ाई जी। इन तरह पाली रे तखतगढ़ माए कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गंगा जल रो पूजन कर आमजन ने शपथ दिलाई। करौली रा पांचना बांध माथे राखी जा कार्यक्रम माए जनप्रतिनिधिया रे साथे आमजन ने पौधारोपण और जल पूजन करो। शिरोई सु माणा खबर नवीस बतायो कि वठे मुख्यमंत्री कार्यालय सु पहुंची टीम अभियान री प्रगति री समीक्षा करी।
2: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग MPT रिचार्ज साफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: जोधपुर री बड़ली ग्राम पंचायत में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जिला अहलकारा रे साथ है बड़ली भैरूजी तालाब माथे श्रमदान कर आमजन सु सहभागिता निभाने रो हेलो करो। अभियान रे तहत काले जिला माए कृषि संगोष्ठी वेला और नवाचार प्रदर्शनी लगाई जावेली। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनायो जा रियो है। ओ दिन तंबाकू रे उपयोग ने समाप्त करने रे लखस सु विश्व स्वास्थ्य संगठन कानी सु शुरू करी जी महती वैश्विक पहल रो

0: इशु है। इन वर्षों विषय अपील का अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना राख्यो गयो है। इन मौके माते प्रदेश भर में भी न्यारा न्यारा जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। और अबे मौसम, प्रदेश रा कई हिस्सा माए लाड़ला दो दिनासू बण्योड़ो आंधी बारिश रो दौर धीमो पड़ गयो। हालांकि कुछ एक जगह माथे आज भी धूल भरी आंधी रे साथ बिरखारी गतिविधियां दर्ज करी जी। मौसम महकमो पश्चिमी जिला माए तेज हवावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां माथे बरसात रे साथ ओला पड़ने री चेतावनी जारी करी है। महकमा बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर और डीडवाना कुचामन रे खातिर आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट वठिने। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर रे खातिर येलो अलर्ट बतायो है। मौसम केंद्र जयपुर पश्चिमी विक्षोभ रे असर सू आज बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक थोड़ा माए तेज बादल गरजने रे साथ धूल भरी आंधी चालने री आस जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट रा 19वां सीजन रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस रे बीच खेलो जावेला। अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम माथे सिंजिया 7:30 बजे सू शुरू वेला। इन सीजन माए दोनों टीमा चौथी बार एक दूजे रे सामने वेला। पहले तीन मैचा माए आरसीबी 2 माए और गुजरात टाइटंस 1 माए जीत हासिल करी ही। दोनों ही टीमा लीग मुकाबले में 9-9 जीत दर्ज करी ही और बरोबर अंक हासिल कर। ध्यान जोग है कि राजस्थान रॉयल्स सीजन में चोखो प्रदर्शन करता हुआ प्ले ऑफ ताइरो सफर तय करो हो। इन खिताबी मुकाबले ने लेर क्रिकेट प्रेमिया में रोमांच बण्योड़ो है। और आखिर माए खास खास खबर एक कर फेरू सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियां सू चोखे काम सू जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करियो। आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करिया। उर्वरकां रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स रे बीच वेली खिताबी भिड़ंत। इनरे साथे ही प्रादेशिक समाचारां रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो वियो। मणो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दादी कौन सा प्लांट है?
7: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
8: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
6: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
8: क्यों?
6: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
8: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजने को हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: लिए, क्यों बनियोड़ा लोगा खन बैठा जन की तो की अपने सावचेती वाली या सांतरी चीजा मिल जाया करे।
1: तुलाराम भाई देखो बात तो आप ही भी मैं आपने भी बात बोल सकूं कि आपसे मिलना तो कुछ सीखने नहीं मिले हैं। और देखो बात करा के मौसम की तो बदल रही है।
0: हाँ।
1: काला पदी क्योंकि तूफान सो आ गयो पूरे बीकानेर में एकदम दिन रे टाइम में अंधेरो छा गयो।
0: बिल्कुल
1: तो इतना जोरदार तूफान है और सगला जिको भी कोई तूफान है आंधी है मी है जिका भी आवे तो काम काज तो देखो अपना सगला ने करना ही पड़ती है। अपना जिका किसान भाई है जिका खेत में परिश्रम करता रहे और बांग ने भी आप काम करनो पड़ती।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इन खातर कहीं है कि आज जी आप बात करा कि अपनी खेती में लागत कम करने वास्ते कहीं सुझाव हो सके हैं।
0: बिल्कुल देखो कितनी अच्छी बात है कि भाई खेती बाड़ी जिका है वो हर किसान से जुड़ियों है और खेती किया करे लोग कि महंगो सौदो गयो बीज महंगा मिले बीजा पर मान लो बाद में फसल तैयार होगी तो छिड़काव करना शुरू की पेस्टिसाइड लवा तो बे महंगा खाद महंगी ये सगली चीजा कर कि बड़ो महंगो सौदो और दाम मिले को नहीं। और जे कोई भगवान नहीं करे कोई प्रकृति रो प्रकोप हो जाए जो काल अचानक आंधी आएगी ई तरह कोई आंधी आएगी मौसम खराब हो गयो तो आप फसल भी चौपट हो जाया करे तो फसल तैयार करण स्वरूप अपन लागत कम किया कर सका इ पर तो देखो विचार करना बहुत जरूरी है।
1: तो इन वास्ते सबसे पहला कही है कि तो लराम भाई अपन अपन जी खेत री माटी होए नी बीरो परीक्षण करवा लेनो ताकि किसान ने मतलब बिंगो मालूम पड़ जाए कि आ मिट्टी कितनी उपयोगिता है इरी इमे कितना कीटनाशक उपयोग करनो है और अपन कई खर्च बैठ सी मिट्टी री गुणवत्ता को ध्यान होसी तो बा फसल चोखी होसी।
0: बिल्कुल बिल्कुल देखो माटी री जांच भी जरूरी है और सागे सागे आपने जिका आपारी परंपरागत कृषि रा जिका साधन आनी भाई जियो पहली जैव आधारित खेती जैविक खेती करता लोग खाद जिकी है बा जैविक खाद प्रयोग में लेता तो ए जिकी आपा आधुनिक यूरिया और दूसरी तरीके री जिकी खाद काम में लिया करा विश्व आपारी लागत बढ़े तो आपा यदि जैविक खाद इस्तेमाल कर सां जी की आप खेत में ही तैयार हो सके और बिल्कुल जीरो लागत पर हो सके क्योंकि पशुधन भी आपस आगे रखा करा तो भी पशुधन सु और आप खेत रे कचरे सु ही आप तैयार कर जैविक खाद कर सका तो बिला कम सु कम जीरो लागत में भी आप खाद तैयार हो जाया करे।
1: और तोलराम भाई इंगे सागर सागर देखा कि अपनी जी की फसल री जी की सफलता रो जी को आधार होया करे नी वे होए बीज है। अगर चोखा बीज है प्रमाणित बीज है बांग उपयोग करे तो भी आपा लागत ने कम कर सका।
0: बिल्कुल देखो और एक और बात हो सके कि भाई पानी पर खर्चो घणो होवे पानी ट्यूबवेल चलाऊं सारू कई खर्चा करना पड़े तो आपा बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सु काम में करा तो अपर कम लागत में बीज अपन अच्छो मिल जाए बिजली की बचत भी हो जावे फिर आपारी लागत जी की है बा बड़ी कम हो जावे उर्वरक भी जी का यानी बे आपा भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति रे जल रे सागे ही आपा दे सका।
1: और तोलाराम भाई इंगे सागे सागल अगर किसान भाई लोग है आपकी फसल में भी विविधीकरण रखे नहीं तो वे भी चोखो मतलब आपकी लागत ने कम कर सके है। फसल विविधीकरण के अंतर्गत किसान कहीं करे के अनाज के सागे दलहनी तिलहनी भी उगा सके है बागवानी फसल भी अपना सके है और साथ साथ औषधीय जी का पौधा है बागो भी उपयोग कर सके है पशुपालन और डेयरी ने भी इसे जोड़ सके है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और यही अपने एकीकृत पोषक तत्व बीहार प्रबंधन भी कर सके है कीट प्रबंधन भी अपने एक साथ मिलार करना चाहिए और खास बात जी की है अबार जी की यहाँ पर लागत बचाऊंडी है। देखो बिजली रो खर्चो बहुत आया करे तो यदि आप सोलर बिजली ने इस्तेमाल करा सौर ऊर्जा ने काम में लेवा तो भी अपन बड़ो लाभ मिल जाया करे।
1: और तो लरम भाई सगे सगे अगर आप बात करा के कृषि यंत्रीकरण को जिको महत्व है नी वो भी बोले क्योंकि किसान ने एक बहुत बड़ी चुनौती हुए मजदूरी देवनी क्योंकि एड़े में कही है कि कृषि यंत्रीकरण पर अगर लागत कम आसी नहीं तो बने मतलब बचत कर सी और आपकी खेती में जो की लागत है भी ना कम कर सी।
0: बिल्कुल। और भी देखो कई तरह का साधन है कि डिजिटल युग है जन कृषि रे वास्ते भी डिजिटल जितना भी उपयोग होया करे प्लेटफॉर्म आपने मिले चाहे बा ई मंडी होवे चाहे फिर और कोई तरीके रा भी है तो भी आप बिया ने उपयोग कर अपने लागत जी की कम कर सका। एफपीओ एक जी की चीज है बा कई गांव वाला कई किसान और समूह सु बनिया करे एफपीओ यदि आप बना रहा पर फसल ने बेचन सारू और सुरक्षा सारू आप रखा एक ही जगह पर तो बीमे भी आपने बड़ो लाभ मिल जाया करे और फिर यदि आप जोखिम भी फसला रही जी की मैं

0: योग भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो विश्व बचन सारू भी आप आपारी फसल बीमो करवा सका।
1: बहुत ही चौकी जानकारी बताई आप तोलाराम भाई। अब अपना जी का किसान भाई लोग एक मीठे गीतड़ ले उड़ीक रख रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो सुना पाएगा मीठो सो गीतड़ लो।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मिठो सो गीतड़ो सुनियो और तोलाराम भाई आपा दिखा कि अपनी भारतीय जी की संस्कृति है, अपना खेत खलियान है, अपनो खान पान है, भी में मोटे अनाज एक बहुत ही बड़ो योगदान रहे है। और अपन जी की थाली है नी खाने री, भी मैं आपा दिखा कि बाजरे, ज्वार, रागी, कुटकी, साओ, कंगनी, ए जिका भी प्रकार का मोटा अनाज है नी, अभी शोभा बढ़ावे। पर अपा देखा कि आजकल की जी दुनिया इनी बा कुपोषित हो रही है, मोटापो बढ़तो जा रहे है, मधुमेह और अनेक तरह का जी का परिवर्तन आ रहा है नी, मैं देख रहा बीमारियां आ रही है अपा देख रहा। तो इन वास्ते कही है कि मोटे अनाज ने पुण्य केंद्र में लायो गयो है और भारत सरकार है भी ने एक बहुत ही चोखो नाम दिए, श्री अन्न नाम दियो है।
3: बिल्कुल देखो, और इन्हें एक चीज और है भाई, आजकल सब लोग एक अपन बताने की जरूरत को नहीं है कि कई तरह रा बे जिका फूड जिका इस्तेमाल करें खाउन पीने री चीजा जी की बाजार में मिले है, पिज्जा बर्गर टाइप री जी की चीजा होया करे, ए सब अपने शरीर ने नुकसान देने वाली है। और आओ जी को कोरोना रो टाइम पीरियड आयो तब लोगों ने समझ में भी आयो कि भाई देखो ए खान पान जी को नहीं बो यदि आप अच्छो नहीं रखियो तो बड़ो नुकसान हो सके। तो इसो भी बढ़ फिर सरकार इन्हें देखो

0: अंग्रेजी में भी नाम दियो है श्री अन्न ने सुपर फूड। और वो सुपर फूड इन वास्ते है कि अपारे शरीर में जिका भी तत्वारी आवश्यकता हो, चाहे वो आयरन है, चाहे कैल्शियम है, चाहे और कोई तरह का तत्व अपने चाहिए शरीर ने, वे सब ई मोटे अनाज में अपने भरपूर और पर्याप्त मात्रा में मिल जाया करे।
1: और ये श्री अन्न के अंदर आप जहाँ बात कर ला के बाजरो है, ज्वार है, रागी है और भी बहुत सारा जिका जिया की कोदो है, कुटकी है, सावा है, कंगी है, जिका फूड होया करे है, खान पान होया करे है, जिका पोषक तत्व सु भरपूर मात्रा में है और कम पानी और कम लागत में तैयार होने वाला है, तो बहुत ही चोखा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इन्हें श्री अन्न भविष्य रो सुपर फूड बतायो है और जन जन तक इनको पहुंचाने वास्ते आह्वान भी करियो है।
0: बिल्कुल, देखो आ तो बताए दी कि भाई एक कम पानी में लाग जाओ है। और एक और जी की है बीरी आ विशेषता है कि अपरी ए जितनी भी फसलां तैयार हुए ए कम पानी में तैयार हो जावे और कार्बन उत्सर्जन जी को है वो भी कम करे, भूमि जी की है बीरो संरक्षण रो काम करे। और खास बात है अपर जी को स्वास्थ्य है नहीं बिना बिल्कुल अच्छो बनायोड़ो राखनो, अपरी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बनायोड़ो राखनी और पर्यावरण के संरक्षण में पूरो पूरो ई सुपर फूड जी के ने बोल रहे हाँ इरो बड़ो योगदान दिया करे।
1: और इमें जिका पोषक तत्व के भंडार कैस कहा जी, प्रोटीन रो चोखो स्रोत होया करे है, फाइबर भी में खूब हुए है और आयरन कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पायो जावे है। कुल मिलार अपा तोलाना भाई कैस कहा के वो सुपर फूड है क्योंकि पोषक तत्व सु भरपूर है। तो आज जी जी की आधुनिक जी की अपा लोगां दिखा के पिज्जा बर्गर गलारे दूर रहे तो बिसु मतलब आज के टाइम में सही कोनी अपने स्वास्थ्य वास्ते। तो एजिका अगर मोटो अनाज अपन थाली में सम्मिलित कर ला, अपन खान पान में सम्मिलित कर ला, तो आप अपने स्वास्थ्य में सही रख सकते।
0: बिल्कुल, और देखो कहो भी है अपर बड़े रा के भाई पहलो सुख है वो निरोगी काया है और जिको निरोगी काया है नी वो अपने मोटो अनाज या सुपर फूड जिको है वो ही दे सके है। और विश्वी जुड़ियोड़ो है देखो अपर जिको गीत है नी वो भी अपर थाली रो जिको है बाजान है कह सका जीरे बिना अपर कोई सब्जी बढ़िया बुन करे है और भी जीरे पर ही गयोड़ो गीत है सुनो देखो।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

तो तोलाराम भाई अभी बहुत ही फूटरस गीतड़ो आप सुनायो और आप देखा है कि जिकी अपनी फसलां ने जो प्राकृतिक आपदा है आंधी तूफान ये सगला नुकसान पहुंचाए ये सागे सागे एक और मोटी चुनौती है अपनी फसलां वास्ते जिकी है जंगली जानवर नील गाय आवारा पशु जिका कभी अंदर अपन खेता में घुसे नुकसान पहुंचाते किसान दिन रात मेहनत करे आप खून पसीना ये कर दे और जब फसल कटाई समय आवे नहीं तो पशु पूरी की पूरी फसल में नष्ट कर दे।

0: तो तोलाराम भाई अभी बहुत ही फूटरो सो गीतड़ो आप सुनायो और आप देखा है कि जिकी अपनी फसल ने जो प्राकृतिक आपदा है आंधी तूफान ये सगला नुकसान पहुंचाए सागे सागे एक और मोटी चुनौती है अपनी फसल वास्ते जिकी है जंगली जानवर नील गाय आवारा पशु जिका कभी अंदर अपन खेता में विशेष नुकसान पहुंचाते किसान दिन रात मेहनत करे आपको खून पसीना ये कर दे और जब फसल कटाई का समय आवे तो पशु पूरी की पूरी फसल ने नष्ट कर दे तो तोलाराम भाई इन वास्ते जो अपनी सरकार है बहुत ही चौकी योजना ले रही है तारबंदी
1: ये वही बिना आगे करे फसल सुरक्षा सु किसान की जो समृद्धि है वो जुड़ी हुआ करे और सुरक्षित फसल है तो अपन बिल्कुल निश्चित रूप से दाम भी अच्छा मिल जाए करे और नुकसान जी को होने की संभावना वो सब बच जाए करे तो देखो वो तो इतना आसान उपाय है कि अपन को तो थोड़ा सो जानकारी चीज है तो सरकार जी की तरह की योजना वाला बीर मायने कई तो जिका है बीर मायने 50% तक रोज जो है अनुदान मिल जाए कई राज्य में तो और कई में है वो ज्यादा भी मिले फसल जी जी की सुरक्षा है फसल उत्पादन रो वृद्धि हो जावे और जिको फसल ने नुकसान हो या अपर जी श्रम हो वीर मायने भी बड़ी बचत हो जाए
0: और अनेक तरह का जिका फायदा है कि अपनी फसल सुरक्षित रहसी और उत्पादन भी बढ़सी श्रम भी बचत होसी और किसान ने जिको मानसिक तनाव है वो सब सुकम और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तालमेल हो जिकी कृषि में निवेश सुरक्षित हो रहे उत्पादन बढ़े बाजार में आपूर्ति बढ़े किसान की आय में भी बढ़ोतरी हुई और तोलाराम भाई तकनीक है वह भी पर आधारित है जो आज आप बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के बारे में और सेंसर आधारित सुरक्षा प्रणालियों

भाई सरिता गोस्वामी रा अपन गीत सुनियो। और एक और बात है मुक्ताबेन के अपन सावचेती वाली बा आ है कि भाई अबार घर घर लोग आ रिया है जनगणना सरू। अब इस जनगणना में अबार तो देखो केवल मकाना री गिनती हो रही है, बाकी चीजा री गिनती को नहीं हो रही है। केवल अपारे खने कई साधन है, कई सुविधा है, बीरी जानकारी अपारे घर सु संबंधी जी की जानकारी है बा मांग रहा है। सबने जागरूकता राखर आप गरी जानकारी देनी चाहिए और जागरूकता आपरी भी है कि भाई एक और अपा जी को है हर्ज सुना दा फिर आपा सीख ले सा।

प्रिय श्रोता, अपना कार्यक्रम सुन रहे थे ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए लक्की अली के स्वर में ये गीत।

पंकज दास की गाए हुए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। रेडियो 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8 बजने को है अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

करिश्मा कुदरत का इस फिल्म में आपने साधना सरगम और सुरेश वाडकर को सुना। अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है अंगा।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मीडी वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनिए ज्ञानेश्वरी शर्मा का गाया हुआ

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
2: पिज्जा पार्टी।
3: चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं आपको दे डालूंगी।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ, सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: हेतराम जावा का गाया हुआ लोकगीत आपने सुना, और आप सुनिए गायत्री सोलंकी के स्वर में ये।

के बजाय हुए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके पश्चात

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी।

0: होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
0: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया।

0: रहा है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एक्सेस स्कीम के जरिए लोन लेने हेतु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा के

0: सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkhan town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं।

मंगेशकर को, फिल्म का नाम है हंसते जख्म। इसके साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। दिल्ली 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के धुलावर चैनल से बोल रहे हैं। रात के 9:30 होने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुगूंज। इस कार्यक्रम को हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र

ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीस फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई, लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार,

0: और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रही।
1: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
2: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
3: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
2: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। हम पर बैठकर तमाशा देखना आसान, तुम खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती।
0: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने

0: ये सीन जरा गमगीन था, मगर चाइनी साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।

0: ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थीं।

0: वो काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है कभी भारत की बदलती आवाज कभी भारत की बदलती सोच है कभी भारत का बदलता अंदाज

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, झोपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

0: फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।
1: आज गावा

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें,

श्रोताओं, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल अमर चैनल है। अब आप सुनेंगे रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा। इसे हम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी आज की रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरम येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashavani Kadappa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुचरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
2: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री वी एन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुचरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्ले। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
1: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
2: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निम्नु कोरी युनम्मुरा। अब श्री येरैया और मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वी एन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पद्मम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanameni, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Adi Taal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूर्यानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुर एरैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एरैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूर्यानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री एर्रैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे और उसके पश्चात
3: आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
4: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
3: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
4: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
3: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला

0: सोलन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely